FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद सहित संयुक्त

0: राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में सुनिए ब्रह्मचर्य विषय पर विचार।
2: संसार में हर प्राणी सुखी तो रहना चाहता है, परंतु सुख की परिभाषा को नहीं समझता। मनुष्य जीवन को चाहता है, परंतु जीवन की परिभाषा नहीं समझता। महात्माओं के विचार से ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ब्रह्मचर्य ही मनुष्य के सुधार का रास्ता है। धर्म परायण जीवन का साधन है और किसी जीवन की परिभाषा है। आजीवन ब्रह्मचारी रहने से महातपस्वी ही कर सकते हैं, जो कि

0: संयम और इंद्रियों के दमन करके दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, परंतु ये सब हर प्राणी के लिए संभव नहीं है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके ही प्राणी देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए धर्मपूर्वक उत्तम प्रजा का निर्माण कर सकता है। शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने प्रकृति के नियम बांध रखे हैं और प्रकृति के नियमों का पालन करना हमारा परम धर्म है। ब्रह्मचर्य के नियम तोड़ना धर्म के नियमों को तोड़ना है और प्रकृति को चुनौती देना है। अगर प्राणी नियम से जिए तो गृहस्थ रहकर भी ब्रह्मचारी रह सकता है। अखंड ब्रह्मचारी और गृहस्थ में अंतर तो बहुत है, फिर भी नियम, धर्म, संयम और मन पर नियंत्रण रखने वाला गृहस्थी भी तेजस्वी, बलवान, मनोबल वाला सबका सारथी हो सकता है। नियम संयम से जीवन व्यतीत करने से कई प्रकार के दोषों से बचा जा सकता है। कृष्ण को काट कर मन को भी पीसा जा सकता है। मन की जीत ही सबसे बड़ी जीत है। विद्यार्थी जीवन में संयम और नियम का पालन करने से शिक्षा में भी सहायता मिलती है। इससे उसकी बुद्धि, बल, कीर्ति और शिष्य की एकाग्रता बनी रहती है। शिष्य की एकाग्रता ही सफलता में सहायक है। इसी के आधार पर गुरु व्यसनों से बचा जा सकता है। विद्या समाप्त करने के उपरांत गृहस्थ जीवन भी सुख और धर्मपूर्वक व्यतीत किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने संयम मुद्रा और पवित्र आचरण द्वारा मन, वचन, कर्म से उसकी ओर अग्रसर होना। इसी को महाव्रत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रिय दमन करना, ब्रह्मचर्य धारण करना परम और श्रेष्ठ पद है।
1: अभी आपने ब्रह्मचर्य विषय पर आज के विचार सुने। इसी के साथ विचार बिंदु संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब प्रभु वंदन के साथ शुभारंभ करें आज की आराधना।

एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और ईश्वर का आशीर्वाद। जब ये तीनों मिलते हैं तो दिन की शुरुआत कितनी खूबसूरत हो जाती है। आज के सफर में हम सुरों और भजनों की ऐसी गंगा में गोता लगाएंगे जो सीधे हमारे दिल को छू जाएगी। हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है कि ये पूरी सृष्टि ईश्वर का ही रूप है। हर जीव में, हर जड़ चेतन में वही समाया हुआ है। इस भजन को सुनकर मन को जो असीम शांति मिलती है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर ही है, तो मन का सारा अहंकार मिट जाता है। और जब अहंकार मिटता है तो हमें प्रकृति के हर हिस्से में, हर जर्रे में उस परम पिता परमेश्वर की गूंज सुनाई देती है। चाहे वो कैलाशपति शिव हो या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो तो हर जगह मौजूद हैं। इसी पावन भाव को समेटे हुए आइए सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, जहाँ राम हैं वहाँ शक्ति का होना तो लाजमी है। वो आदि शक्ति जो ब्रह्मांड का आधार है, जो दुखों को हरने वाली और सुखों को देने वाली है, हमारी माँ दुर्गा। चलिए अब इस आध्यात्मिक सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधे माँ के दरबार में। पूजन अर्चन और इस दिव्य माहौल को महसूस करते हैं इस बेहद खूबसूरत दुर्गा पूजा भजन के साथ।

माँ दुर्गा की इस स्तुति ने तो पूरे माहौल को ऊर्जा और भक्ति के रंग से सरोबार कर दिया। माँ की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनके चरणों में आते ही जीवन के सारे कष्ट, सारी चिंताएं पल भर में दूर हो जाती हैं। माँ की करुणा का कोई अंत नहीं है। तो आइए इस पावन सफर में अब हम सब मिलकर माँ अम्बे के पावन चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं।

माँ की ममता और शक्ति के दर्शन के बाद अब समय है उस परम शांति की ओर बढ़ने का, जहाँ प्रेम और करुणा के साक्षात स्वरूप हमारे कन्हैया विराजमान है। भक्ति का सफर तब पूर्ण होता है जब हम शक्ति से जुड़कर अंत में उस प्रेम के सागर में लीन हो जाते हैं। जब जीवन की आपाधापी से मन थक जाए तो बस एक ही नाम आता है, वो है मनमोहन, वही जो हमारे दुखों को हर लेते हैं और जिनकी दया का कोई अंत नहीं है। आज के भक्ति प्रवाह को हम पूर्णता दे रहे हैं उस सुंदर भजन के साथ, जिसे गाकर भक्त स्वयं को प्रभु के चरणों में सौंप देता है। आइए आप और हम मिलकर पुकारते हैं अपने प्रिय श्याम को।

श्रोताओं, आज का ये आध्यात्मिक सफ़र अब यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद है आज की इन लहरों ने आपके भीतर की शांति को और गहरा किया होगा। आज हमने आपको सुनाए अनूप जलोटा, महेंद्र कपूर और साथी जगजीत सिंह और घनश्याम वासवानी के गाए भजन। जाते जाते बस इतना ही कि अपना ख्याल रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने भीतर के ईश्वर को कभी ना भूलें।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज की बात। देश दुनिया के इतिहास में आज के दिन घटित महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। कैलेंडर के पन्नों को पलटें तो आज है तारीख 3 जुलाई। आज का दिन इतिहास के दृष्टिकोण से बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं आज के दिन दुनिया में क्या क्या घटा था। सबसे पहले रुख करते हैं विज्ञान और तकनीक की दुनिया की ओर। 3 जुलाई 1886 को दुनिया का पहला व्यवहारिक मोटर वाहन सड़कों पर उतरा था। कार्ल विंच ने अपनी बेंच पेटेंट मोटर वॉगन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। सोचिए, उस एक आविष्कार ने आज पूरी दुनिया बदल दी है। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। 13 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने 1971 के युद्ध के बाद शांति की राह प्रशस्त की थी। तो श्रोताओं, 3 जुलाई से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं, यानी इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे हर छोटा बड़ा बदलाव कल के एक बड़े इतिहास की नींव रखता है। और आइए अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक हंसा मेहता की, जिनकी आज जन्मतिथि है। उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी कुछ बातों में, हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उनके पिता नवाब सर मनुभाई मेहता बड़ौदा राज्य के दीवान थे। वे महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से हंसा मेहता जी प्रभावित थी। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने पिकेटिंग की, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हंसा मेहता ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें बंबई में महिला शिक्षा के विस्तार के लिए बहुत काम किया। आज के दिन हम याद करेंगे जॉनी के नाम से मशहूर राजकुमार साहब को और बॉलीवुड की मास्टर यानी सरोज खान जी को। अपनी भारी आवाज, मखमली अंदाज और अभिनय के अलग ही लहजे के लिए राजकुमार साहब हमेशा याद किए जाते रहेंगे। 3 जुलाई 1996 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनके संवाद बोलने का तरीका आज भी मिमिक्री कलाकारों की पहली पसंद है। वक्त, पाकीज़ा या फिर सौदागर जैसी फिल्में हों, उनका अभिनय आज भी नया सा लगता है। और वहीं 3 जुलाई 2020 को हमने खो दिया था उस जादूगर को, जिसने डांस को सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक भाषा बना दिया। सरोज खान, जिन्होंने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों के साथ मिलकर सिनेमा को 1, 2, 3 धक-धक करने लगा और डोला रे डोला जैसे सदाबहार गाने दिए। उन्हें बॉलीवुड की डांस कोरियोग्राफर की माँ कहा जाता है। ये दोनों सितारे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन पर्दे पर उनकी जीवंत उपस्थिति हमें हमेशा ये एहसास दिलाती है कि कलाकार कभी मरते नहीं, वे अपने काम के जरिए हमेशा जीवित रहते हैं। इसी के साथ हमारी आज की बात यहीं पर संपन्न हुई। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, आज विविधा के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए बेहद जरूरी है। आज है 3 जुलाई और पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। सभी श्रोताओं को विभु कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना है और जूट या कपड़े के थैलों जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वैश्विक पहल की शुरुआत पहली बार जीरो वेस्ट यूरोप द्वारा 2009 में की गई थी। क्या आपने कभी गौर किया कि हम बाजार जाते हैं, एक थैला खरीदते हैं, उसमें सामान रखते हैं और घर आते ही उस प्लास्टिक को डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस एक प्लास्टिक बैग की उम्र कितनी है? इस्तेमाल सिर्फ 5 से 10 मिनट, लेकिन धरती पर उसका असर हजारों साल। जी हाँ, एक प्लास्टिक बैग को पूरी तरह ख़त्म होने में 100 से 500 साल लग जाते हैं। हम अपनी सहूलियत के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जहर धीरे धीरे हमारी मिट्टी को बंजर बना रहा है, हमारे समुद्रों को कचरा पात्र बना रहा है और उन बेजुबान जानवरों की जान ले रहा है जो उसे खाना समझकर खा लेते हैं। आज के इस खास दिन का उद्देश्य यही है कि हम इस लत को छोड़ें। ये कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस एक छोटी सी शुरुआत है। जरा सोचिए, जब हम अपने घर की खिड़की खोलते हैं तो सामने देवदार के ऊंचे पेड़ और दूर नीले पहाड़, हरे पहाड़ दिखते हैं। लेकिन क्या उन पहाड़ों की तलहटी में हमारे सुंदर रास्तों के किनारे या हमारे पवित्र जल स्रोतों के पास वो रंग बिरंगी पॉलिथीन की थैलियां अच्छी लगती हैं? बिल्कुल नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक पॉलिथीन से क्या होगा, लेकिन जब हमारे घर से हर रोज प्लास्टिक कचरा बाहर निकलता है तो वो हमारे इन नाजुक पहाड़ों के लिए एक नासूर बन जाता है। वो प्लास्टिक जिसे हम चंद मिनटों के इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, उसे मिट्टी में ख़त्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। याद रखिए, पहाड़ की खूबसूरती में ही हमारी असली पहचान है। अगर हमने आज नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। तो आज संकल्प लेते हैं कि ना तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, ना अपने सुंदर आंगन को प्लास्टिक से गंदा होने देंगे। आज 3 जुलाई से एक नई शुरुआत करते हैं। प्लास्टिक बैग को कहिए ना और अपने पर्यावरण को कहिए हाँ। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और प्रकृति का भी, क्योंकि अगर प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक

0: और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजक और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा

0: सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण खनिज सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ ही क्षणों उपरांत 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 143। 7:50 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम गांधी चर्चा। दिन के 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिएगा संतुलित जीवन सफल जीवन विषय पर वार्ता। साथ ही सुनिएगा वन है तो हम हैं विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री अनीता कनवाल से किरण बिष्ट की क्षेत्र संकलित बातचीत। दिन के 1:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

मंथ की कड़ी संख्या 1320 प्रसारित की जाएगी। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती की बातें सुनेंगे दिन के 2:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी भंडार गृहों में अनाज सुरक्षा। जानकारी देंगी श्रीमती रेणु सनवाल। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। आज की बात में चर्चा होगी अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं और सिने जगत से में सुनिएगा सरोज खान के बारे में। उत्तरायण शाम 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा। चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान। साथ ही सुनिएगा वृक्षारोपण हमारी जिम्मेदारी विषय पर क्षेत्र संकलित बातचीत। शाम 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आज की बातें में आप सुनेंगे ऊसर भूमि में धान की खेती।

शास्त्रीय संगीत का आप आनंद लेंगे सुबह 8:30 पर, लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, लोकमंजरी इनके 11:30 पर, लोकसुर 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम में, और शाम 5:05 पर शैलस्वर के तहत सुगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा। सुबह 10:05 पर सबरंग में, तिनके 1:15 पर सुगम संगीत, रात्रि 8 बजे सबरस, रात्रि 10 बजे सुगम संगीत में, और शाम 6:41 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:05 पर, फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्जर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार में आप सुनेंगे एक ही कलाकार की नगमे, 11 बजे सैनिकों के लिए, दिन के 12 बजे मेरी पसंद में, दिन के 2:45 पर फिल्म संगीत में आप सुनेंगे एक ही फनकार को, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत में, शाम 7:40 पर फिल्म संगीत, 9:15 पर सुनिएगा इंद्रधनुष कार्यक्रम में, रात्रि 9:30 पर सुनिएगा साप्ताहिक फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत में। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 143।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही देख है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में

सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

0: अभी आपने श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग सुना, भाग 143। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: कार आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। पिथौरागढ़ में मनरेगा के तहत 100 कार्य दिवस पूरे करने वाली 8 महिला श्रमिकों को सम्मानित किया गया और देहरादून में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं।

0: यह समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आवर्जन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। बागेश्वर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कौसानी और गरुड़ क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान दूध, पनीर और दालों के 6 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। उपायुक्त कुमाऊं मंडल खाद्य सुरक्षा डॉक्टर राजेंद्र सिंह कठायत, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा बागेश्वर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी बागेश्वर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए विमान ने विभिन्न दुकानों से दूध, पनीर और दालों के नमूने एकत्र किए। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है।
2: बागेश्वर नगर में जो भी खाद्य स्थान है उनका आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा उसमें संदेह के आधार पर एक लगभग आधे दर्जन से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठे किए गए, जिनको जो है जांच हेतु प्रयोगशाला भेज दिया गया है। अगर उन नमूनों की रिपोर्ट में वो नमूने असुरक्षित पाए जाते हैं या उनमें कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता जो भी उसमें सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा मेरे साथ कौसानी स्थित जो भी वहाँ के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उसमें उत्तराखंड सरकार के आदेश पर तथा उनके निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा से संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कौसानी के लगभग 25 से लेकर 30 होटल व्यवसायियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
0: उपायुक्त कुमाऊं डॉक्टर सिंह ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड विण में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. सैनी ने बताया कि नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को भी पहले की तरह रोजगार मिलता रहेगा और योजना को लेकर किसी भी तरह की भ्रांति में आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने की अपील की, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में मनरेगा के तहत 100 कार्य दिवस पूरे करने वाली 8 महिला श्रमिकों को सम्मानित किया गया, साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया।
4: इसके अंदर जो मुख्य बदलाव है जो एमजी नरेगा के मुकाबले, उसमें एमजी नरेगा के अंतर्गत जो है 100 दिन का रोजगार जो उपलब्ध कराया जाए, जिसको बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार यहां पर कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें वेज रिवीजन भी अभी की गई है। हमारे राज्य में जो वेज नरेगा की थी वो 252 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है वेज रिवीजन के अंदर। साथ ही साथ जो अनुमन्य कार्य है, जो पहले 266 काम अनुमन्य थे पहले नरेगा के अंतर्गत, उनको

0: उठाकर 318 काम इस तरीके से ग्राम पंचायत स्तर पे कराए जा सके। तो काम जो कराए जाने हैं गांव के समग्र विकास के लिए, उनकी जो जनमता है वो भी काफी मात्रा में बढ़ी है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक पीक एग्रीकल्चरल सीजन का प्रोविजन किया गया है, यानी कि जिस समय पर जो है उगाई और जो आपकी रुपाई का सीजन जो होता है, जिसमें ज्यादा काम होता है और एग्रीकल्चर लेबर हमारी सारी उसमें एंगेज रहती है, उस सीजन में नरेगा के काम जो है जो वीबीजी राम जी के अंतर्गत नहीं अंडरटेक किए जाएंगे, ताकि जो है जहां पर भी मजदूरों को ज्यादा लाभ मिलता है वो उसका फायदा उठा सकते हैं। जनपद के अंदर 60 काम जो है इसके अंतर्गत प्रारंभ कर दिए गए हैं 1,32,00,000 की लागत के।
1: देहरादून में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने समिति के गठन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन जारी कर दिया है। इस पर आमजन से 4 जुलाई तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। जिला पंचायत राजाधिकारी मनोज नोडियाल ने बताया कि अंतिम परिसीमन के अनुसार जिले की ग्रामीण जनसंख्या 5,48,851 निर्धारित की गई है। इसके आधार पर जिला पंचायत के 30 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें से अपने मध्य से 10 सदस्यों का चयन जिला योजना समिति के लिए किया जाएगा। नगर निकाय क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 10,49,348 है। इसके आधार पर जिले के 7 नगर निकायों में 202 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें से अपने मध्य से 20 सदस्यों का निर्वाचन जिला योजना समिति के लिए किया जाएगा। और एक नज़र आज के मौसम पर। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा की तीव्र गति से अति तीव्र और दौर तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने लोगों से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने तथा यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी ढांचा एवं सैन्य उपकरणों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक रक्षा समझौते समेत कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। नवोदय टाइम्स लिखता है भारत जापान में रक्षा AI ऊर्जा समेत कई समझौते। इसी खबर पर हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने शीर्ष दिया है सुरक्षा समृद्धि में साथ देगा जापान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में खेलों के ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है पदक विजेताओं को नौकरी देने की प्रक्रिया में लाए तेजी। अमर उजाला ने शीर्षक दिया है राज्य में बनेगी नई खेल नीति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। पिथौरागढ़ में मनरेगा के तहत 100 कार्य दिवस पूरा करने वाली 8 महिला श्रमिकों को सम्मानित किया गया और देहरादून में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं कमलेश कुमार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए उनकी गाई छपेली।

0: बजार कमला नी मारे लटका, अल्मोड़ा बजार कमला नी मारे लटका।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी, और हमारे आज के कलाकार हैं कमलेश कुमार।

गड़ना दगड़ में जरे हीरे तिले धारू बोला हीरा पकड़ के जाएगी।

लसी पसी खीर होई को अबीरा जो इंद्री बस में करे नाम उसका फकीर अब धाग हुना तोड़ी दी चार मुकल खीरा अरे जित घड़ी जागी जानी तू जित घड़ी जागी जानी पकड़ खे जाए चीर रहे जानो अधीर हीरा पकड़ खे जाए चीर दिले धारू बोला हीरा पकड़ खे जाए चीर।

0: काड़ पारे होली ठिपुक में झन भेटे उन छुकी रोली अब ठिपुक में झन भेटे उन छुकी रोली अरे बुढ़िया महतारी मेरी ककड़ खे जाए जी रे नोली बारी कोली हीरा ककड़ खे जाए जी रे रगड़ में जा रही रतीले धारू बोला हीरा पकड़ के जाए जीरोलित गड़ना रगड़ में जा रही रतीले धारू बोला हीरा पकड़ के जाए जीर रतीले धारू बोला हीरा पकड़ के जाए जीर रतीले धारू बोला हीरा पकड़ के जाए
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी और इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं कमलेश कुमार।

लोक मंजरी कार्यक्रम इस वक्त आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं कमलेश कुमार। हम आपको सुना रहे हैं उनकी गाई छपेली और लोकगीत।

कमलेश कुमार के गाए इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा।

0: सबसे पहले आप सुनेंगे बापू के विचार।
1: हमारे शरीर अनंत हैं, किंतु हमारी आत्मा एक है। सूर्य की किरणें परावर्तन के कारण बिलख लगती हैं, किंतु उनका उद्गम एक है। मनुष्य पशु से विकसित हुआ है, इसीलिए उसमें मानवीयता भी है। मनुष्य न पशु है न ईश्वर, वो मनुष्य ही है, क्योंकि वो दिव्यता की ओर विकास अथवा पशुता की ओर अधोगति से किसी एक को चुनने की स्वयं शक्ति रखता है। दिव्य होने के अर्थ हैं समस्त सृष्टि से मानसिक भावात्मक तथा कर्म की एकता। मनुष्य स्वभाव अपने उत्तम रूप में तभी प्रकट होता है जब वो सब अवस्थाओं में सबके प्रति एक सा बर्ताव करते हुए दिव्यता की दिशा में अग्रसर होता है।
0: मनुष्य स्वभाव उसी दिन अपने आप को पहचानेगा जिस दिन उसे इस तत्व की प्रतीति होगी कि मानवता का अर्थ पशुता अथवा क्रूरता का संपूर्ण विनाश है। मैं मनुष्य स्वभाव का एक बड़ी हद तक सूक्ष्म अध्येता हूं और अपनी त्रुटियों का सूक्ष्म विवेचक भी। मैंने जान लिया है कि मनुष्य जिन वादों का प्रतिपादन करता है वो उनकी अपेक्षा महान है। पशु को स्वभावतः संयम का ज्ञान नहीं होता और मनुष्य संयम कर सकता है। वो उसी हद तक मनुष्य है जिस हद तक अपने ऊपर अंकुश रखता है। त्याग मनुष्य को पशु से भिन्न बनाता है। मनुष्य ठीक उसी अनुपात में महान है जिस अनुपात में वो समाज के कल्याण की दिशा में प्रयत्नशील है।
1: मनुष्य और ईश्वर, यहाँ तक कि

0: जीव मात्र तत्वतः एक है। मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। हमें अनेक अपने गौरव को नहीं जानते। इससे इतना ही अंतर पड़ता है कि वे अपने गौरव से लाभान्वित नहीं हो पाते। यदि किसी सिंह शावक का लालन पालन मेमनों के बीच हुआ तो संभव है उसे अपने स्वरूप का ज्ञान न हो और वो उसके लाभ से वंचित रह जाए। जिस दिन जिस क्षण उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा वो अनायास ही अपने वातावरण का राजा बन जाएगा। किंतु यदि कोई भेड़ उसे अपने बीच में देखकर अपने आप को सिंह समझे तो उससे कुछ नहीं होता।
1: कदाचित प्रारंभ में हम सब पशु थे। मैं इस बात पर विश्वास कर सकता हूँ कि हम पशु से बहुत धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य बने। हमें ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने के रास्ते में से एक को चुनना पड़ता है। किंतु चूंकि हमारे भीतर पशु का निवास है, ऊपर के बजाय नीचे का रास्ता चुन लिया जाना आसान है, और विशेषतया उस परिस्थिति में जब हमारे आसपास उसके गुण गाए जा रहे हो। जिस प्रकार पशुओं में शक्ति अथवा हिंसा का बोलबाला है, हमारे समाज में प्रेम अथवा अहिंसा को वैसा ही स्थान मिलना चाहिए। पशु की आत्मा अज्ञानग्रस्त है। वो शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति को भी नहीं जानती। मनुष्य का गौरव आत्मा की शक्ति के उच्च नियम का अनुसरण करने में है। मनुष्य का अंतरात्मा से साक्षात्कार हुआ कि वो फिर हिंसक नहीं रह पाता।
0: ये सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति है, इतना जानना जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में उसकी झलक पा सकता है। मनुष्य को ऊपर उठाने वाले धार्मिक नेताओं और पैगंबरों में ईश्वर का दर्शन नहीं होता, ऐसा कौन कह सकता है? मानवीयता और एकता की एक रूपता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप हम समझ सकते हैं कि हम इसे सच माने तो पहली बात ये होगी कि हमें ऐसी कुछ धारणा छोड़नी पड़ेगी जिसके अनुसार आसपास के सारे लोगों को कष्ट में छोड़कर व्यक्तिगत रूप से आत्मिक विकास की संभावना में विश्वास किया जा सकता हो। यदि एक भी व्यक्ति की आत्मा उन्नत होती है तो सारे संसार की आत्मा कुछ न कुछ उन्नति होती है। ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के कल्याण तक सीमित हो, और इसके विपरीत ऐसा कोई भी नैतिक अपराध नहीं है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपराधी के अतिरिक्त अन्य अनेक लोगों को प्रभावित न करता हो। इसलिए किसी भी व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसी की जिम्मेदारी नहीं है, सारे समाज बल्कि संसार की जिम्मेदारी है।
2: लीजिए सुनिए एक भजन।

0: अभी आप गांधी चर्चा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

0: दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
5: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।

0: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट सनाए तकाईची स्ट्रॉन्गली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehelgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
4: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups.

अभी आपने पंडित वीजी जोग का वॉयलिन पर बजाया राग अहिर भैरव सुना। आपके साथ तबले पर संगत की थी सबीर खान ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार के विवाद में चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश द्वारा संचालित होते हैं, जिसके अंतर्गत आयोग निर्णय लेने से पहले प्रतिद्वंद्वी दावों, सहायक दस्तावेजों और विवाद से जुड़े गुटों की दलीलों की जांच करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, वहीं दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब हम हाजिर हैं आपके फरमाइशी पत्रों, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस और फरमाइशी गीतों के साथ आपके अपने कार्यक्रम गीत निर्झर में। किंतु परंतु लेकिन यदि अगर मगर काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। सभी श्रोताओं को विभु कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम फिल्मी यादों और बेहतरीन कला के नाम, एक तरफ है वो अभिनेता जिनकी आवाज में एक अलग ही ठहराव और जादू था, राजकुमार, तो दूसरी तरफ है मास्टर जी के नाम से मशहूर नृत्य की जादूगर सरोज खान। आज इन दोनों की पुण्यतिथि है तो हम इनको याद करते हैं और आज का पहला फरमाइशी गीत आप सभी की नज़र। शुरुआत करते हैं एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाले गीत से, राजकुमार जी का वो अंदाज और ये सदाबहार गीत।

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा था रवि ने, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी चांडुर बिस्वा तालुका नादुरा महाराष्ट्र से नारायण खड़से, रक्षा, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक, मालती चौधरी, स्वाति चौधरी, कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल, शेरपुर कला, गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति, नवनीत, ग्लाम रोहारी, जिला खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल धंजे, विशाल, शीला और गायत्री, खुर्दी रोड, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद।

आइए अब हम रुख करते हैं उस गीत की ओर जो जिंदगी की नश्वरता और यादों की अमरता को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। ममता फिल्म से लिया गया ये गीत, जिसमें सुचित्रा सेन की भावुक अदायगी और लता मंगेशकर जी की रूहानी आवाज ने जादू बिखेर दिया है। तो सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और रोशन का संगीतबद्ध किया गीत। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है गौतम नगर नादेर से प्रभाकर जोनले आरती जोनले, राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर गुप्ता शारदा रंगानी मौसम संगीता रुद्र रिद्धि, लखनऊ से इस गीत को सुनना चाहते रानी कुसुम पलक पंखुरी, कांति निकेतन राजनगर गांधी चौक से मंजीत गुप्ता सोनाली सूर्यांशी कोमल मेनका माधवी साध्वी तन्मय और गुनगुन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया नवनीत भाटिया और पप्पू भाटिया। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आपका गीत।

कभी सुना रहे ना रहे हम, जो हमें यह एहसास दिला गया कि इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी यादें हमेशा महकती रहती हैं। अब इस महफिल को थोड़ा और संजीदा और रोमांटिक बनाते हैं। एक ऐसा गीत जिसके बिना हिंदी सिनेमा का कोई भी रोमांटिक सफ़र अधूरा है, फिल्म कभी कभी का टाइटल ट्रैक, जो प्यार करने वालों की जुबान पर एक प्रार्थना की तरह है। तो आइए सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में। साहिल उद्यानवी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है खयाम ने, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, जाखोत राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक, डुमराव बिहार से वलीउल्ला अंसारी, आसमा नाज अंसारी, नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु, हीरावली फाजिलका से सुभाष गोद्रा, विमला गोद्रा, और महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश, और दतरंगी से द्वारिका, किशोर कुमार, दीपक कुमार और छावेंद्र कुमार वर्मा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

श्रोताओं, कभी कभी के ख्यालों में खोने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं उस गीत की ओर जो दिल की धड़कनों को और भी तेज कर देंगी। क्या आपने कभी किसी को देखकर खुद को ही भूल जाने वाला एहसास महसूस किया है? तो अब करिए फिल्म साथ साथ का ये गीत जो ठीक वही जज्बात लेकर आया है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम और वलीउल्ला, राजनाथ गांव से याकूब, आसमा, यूसुफ, इमरान और इरफान, रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, बाबू, प्रियांश, भाव्या। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान और अब्बान। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल, गजभिये, तन्मय, बेबी अनिष्का, राधिका और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आप सभी की फरमाइश पर आप

श्रोताओं, साहित्य और संगीत का जब अनूठा संगम होता है तो प्रेम गीत जैसा नगीना निकल कर आता है। जगजीत सिंह जी की मखमली आवाज में ये गीत रूह को छू लेने वाला है। तो आइए अगला गीत, प्रेम गीत फिल्म से, इंदिवर का लिखा गीत और जगजीत सिंह ने संगीत दिया है। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है मोहल्ला हलवाई शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजिदा रानी, हिना कौसर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाद्रा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशव परिधान खुराना। खैल बाजार पानीपत से इस गीत को सुनना चाहते हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, टुकू भाविका सिक्का। और अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

और श्रोताओं, अब बारी है उस गीत की जिसे सुनते ही हर दिल झूम उठता है। किशोर कुमार की वो जादुई आवाज और एक प्यारा सा एहसास, याराना फिल्म का सदाबहार नगमा किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार राजेश रोशन। इस गीत को सुनना चाहते हैं मंगल बेड़ा नर्मदा पार्क से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। भटिंडा पंजाब से इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करणदीप, दपिंदर, सिमरन, दमन और अभिजीत। फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत, अमन पारासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडे। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और आइए अब हम गीतों के जरिए प्यार और रूहानी एहसास को जीते हैं, लेकिन अब बारी है थोड़ा सुर और ताल बदलने की। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म का गीत, राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल, शदा फरीदी की आवाजों में। समीर के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है साजिद वाजिद ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार कार्य और प्रोफेसर वसुधा वज्र सेन। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

श्रोताओं, अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इट इज़ अ वंडरफुल आफ्टर लाइफ फिल्म से सुखविंदर सिंह और राहत फतेह अली खान की आवाज़ों में। इस गीत के लिए हमें फरमाइश आई है सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना आरिज, नदीम अकरम, शमीम अमन, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा। और यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज़ में, क्या सुपर कूल हैं हम फिल्म से। कुमार के लिखे गीत को संगीत से सजाया है मी ब्रॉस और अनजान ने। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है नई दिल्ली रघुवीर नगर से श्रुति ओबेराय, किरण सिंह और सृष्टि। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मध्य प्रदेश से हुकुम कटारिया, पिंटू सेन, हरी निवास खेड़े, बाबुल चौधरी, दीपक, सचिन, कृष्ण, अनुरव, काव्यांशी, प्रभा कटारिया और मास्टर आदेश। इसी गीत के लिए हमको फरमाइश भेजी है रानीगंज पश्चिम बंगाल से रेहान शर्मा, रोशनी, रवि, इंदर, करणदीप और भूपेंद्र। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

श्रोताओं, हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर सफर को कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। आज के इस फरमाइशी फिल्मी गीत कार्यक्रम में हमने राजकुमार जी की संजीदगी से लेकर किशोरदा की मस्ती और आज के दौर के जोश तक सुरों का एक लंबा सफर तय किया, लेकिन जाते जाते अब वक्त है उन यादों का जो दिल के किसी कोने में हमेशा बसी रहती है। फिल्म निकाह का एक बेहद भावुक और रूह को छू लेने वाला गीत, ये गीत सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक एहसास है उन लम्हों का जो गुजर तो गए लेकिन जिनकी कसम कसक आज भी हम अपनी यादों में खते हैं। महेंद्र कपूर की आवाज में हसन कमाल का लिखा गीत है, संगीत दिया है रवि ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं बेंगलोर से प्रियंका मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, कुंज और हनु, रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार, बग बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोमामिका और उत्कर्ष नेताम। लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

श्रोताओं, उम्मीद है आज की ये संगीतमय यात्रा आपको बेहद पसंद आई होगी। यादें चाहे जैसी भी हों, संगीत उन्हें हमेशा

ताज़ा रखता है। फिर मिलेंगे नई फरमाइशों और नए सुरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप गीत निर्झर कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के

0: अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुज्तबा खमेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश कार्यक्रम सबरन। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गई नज़्म।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

सबरंग कार्यक्रम के समापन में आइए आपको सुनवाते हैं पयाम सईदी का कलाम। फनकार हैं चंदन दास।

0: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकेची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की घोर निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकेची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों और संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को जड़ से समाप्त करने, आतंकी वित्त पोषण चैनलों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से उनके गठजोड़ को समाप्त करने तथा आतंकियों की सीमा पार आवाजाही रोकने के लिए कड़ी का आह्वान किया। आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने कहा कि मेले के शुभारंभ से पहले सभी निर्माण कार्य, सड़क सुधार और यातायात संबंधी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हरेला पर्व पर देहरादून जिले में 15,50,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 जुलाई से शुरू होने वाला हरेला अभियान 1 माह तक चलेगा। इस दौरान पौधरोपण के माध्यम से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इसके लिए सभी विभागों को रोपण स्थलों का चयन कर माइक्रो स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं, जिनमें से 2,510 पहलगाम मार्ग से और 2,312 बालतल मार्ग से यात्रा करेंगे। 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। यात्रा 28 अगस्त को समाप्त होगी। और एक नज़र आज के मौसम पर। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर तथा तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पिथौरागढ़ जिले में जोहार मत से स्वायत्त

कर्ता नमजला ने सातवीं वाहिनी आईटीबीपी मिर्थी को 115 किलो ट्राउट मछली की आपूर्ति की। इससे मत्स्य पालकों ने 51,750 रुपए की आमदनी की है। जिला मत्स्य अधिकारी डॉ. रमेश चलाल ने बताया कि स्थानीय बाजार में ट्राउट मछली की मांग अधिक है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त सहकारिता से जुड़कर मत्स्य पालकों को बाजार उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश भर में 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जिला ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर विशेष बहुद्देश्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विकास कार्यों एवं सरकार की जनहितकारी उपलब्धियों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने समस्त विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को सेवा पखवाड़े के सभी कार्यक्रम समयबद्ध प्रभावी एवं जन सहभागिता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रही हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर बहार। एक ही कलाकार में श्रोताओं, आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे और उनके गाए नगमे आपको सुनाएंगे जिनका आज जन्मदिन है। उस आवाज़ का जिसने 80 और 90 के दशक में अपने सुरों से हर दिल पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदाबहार गायक अमित कुमार जी की। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उनकी मधुर गायकी को समर्पित कुछ चुनिंदा नगमे पेश करेंगे। सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, महान पार्श्व गायक और संगीतकार अमित कुमार का जन्म 3 जुलाई 1952 को कोलकाता में हुआ। दिग्गज गायक किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने अपने पिता की देखरेख में संगीत की दुनिया में कदम रखा और 1980 के दशक के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक बन गए। अमित कुमार ने अपने करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में 1968 में फिल्म दूर का राही के गीत मैं एक पंछी मतवाला रे से की थी। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

महान संगीतकार और गायक हैं, साथ ही वे किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार के गाए हुए कई लोकप्रिय और हिट गाने हैं जो आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। अमित कुमार को बचपन से ही घर में संगीत का माहौल मिला, जिसने म्यूजिक में उनकी रुचि बढ़ाई। गायक बचपन में अक्सर अपने पिता संग संगीत के कार्यक्रमों में जाया करते थे और मंच पर अपने सुरों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते थे। तो आइए अब बढ़ते हैं उस फिल्म की ओर जिसकी सादगी ने आज भी लोगों के दिलों को थाम रखा है। आर डी बर्मन की धुनों में ढला ये गीत अमित कुमार जी की आवाज़ में सुकून की एक अलग ही दुनिया बनाता है। सुनिए बालिका वधू का ये कालजयी नगमा।

श्रोताओं, आज के इस विशेष सफर में हमने अमित कुमार जी की आवाज़ के अलग अलग रंगों को महसूस किया। उनकी गायकी का वो ठहराव, वो मस्ती, वो रूहानी एहसास, जिसे सुन हम सभी आज भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज का दिन उनके लिए बेहद ख़ास है, तो पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की बधाई। उनके सुर कि ये महक यूं ही हमेशा बनी रहे और करोड़ों श्रोताओं के दिलों को इसी तरह छूती रहे। इस कार्यक्रम से अब हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।

पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में। इंदिवर के लिखे बोलों को सरगम में बांधा था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। समीर के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है नदीम श्रवण ने।

मीडिया, मैंने भी छोड़ा छोड़ो। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म से, एसपी बाला सुब्रमण्यम, कुमार सानू, पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। समीर और फैज़नवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दीवाना फिल्म से, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के लिखे बोलों को सरगम ने बांधा है नदीम श्रवण ने।

और आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। फैज अनवर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कुमावनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए महिपाल सिंह मेहता के स्वर में लोकगीत।

लोक सुर कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का आनंद आप ले रहे हैं। तो लीजिए आनंद कुमाऊनी लोकगीत का। कलाकार हैं गोविंद सिंह रावल।

अभी श्रोता सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजु पांगते का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में गीत संगीत का जितना महत्व रहा है, उतना ही नृत्य विधा की विविध शैलियों के दीदार हमें होते रहते हैं फिल्मी दुनिया में। और अपनी कोरियोग्राफी के जरिए लगभग 4 दशकों तक ना जाने कितने कलाकारों को अपने इशारों पर थिरकाया जानी मानी नृत्य निर्देशिका सरोज खान जी ने। आज उनकी पुण्यतिथि है तो उन्हें हम श्रद्धा नमन करते हैं और उनके कोरियोग्राफ किए चंद नगमों से गुलजार रहेगा आज का हमारा कार्यक्रम मेरी पसंद।

तो श्रोताओं, जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान जी का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में किशनचंद सद्धू और नोनी सद्धू के घर हुआ, और उनका जो वास्तविक नाम था वो था निर्मला नागपाल। सरोज खान जी ने जब परिवार विभाजन जब विभाजन हुआ तो उनका परिवार भारत आ गया, और उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत मात्र 3 साल की आयु से की थी। पहली बार वो नजराना फिल्म में श्यामा के रूप में नजर आई थी। इसके बाद 1950 के दशक में वो बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करने लगी थीं।

सरोज खान जी का जीवन जो था वो बेहद संघर्षों से भरा रहा। जब वो मात्र 13 साल की थी और उसी दौरान उन्होंने उस दौर के जाने माने नृत्य निर्देशक बी सोहनलाल से विवाह किया, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे, ये उनको पता नहीं था। सरोज खान जी ने अपने एक साक्षात्कार में बताया था कि जब उनका विवाह हुआ तो उस समय वो स्कूल जाया करती थी और उन्हें नहीं पता था कि शादी के मायने क्या होते हैं। एक दिन मास्टर सोहनलाल ने उनके गले में एक धागा बांधा, उन्हें लगा कि उनकी शादी हो गई। हालांकि बाद में शादी में काफ़ी परेशानियां आईं और एक दौर ऐसा भी आया कि वो दोनों अलग हो गए। हालांकि सरोज खान जी ने नृत्य की जो विविध विधाएं थी वो अपने पति बी सोहनलाल से ही सीखी थी। उन्होंने कथक, मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य सीखे अपने पति से। उनके पति बी सोहनलाल इन सभी नृत्यों में पारंगत थे और बाद में जब वो उनसे अलग हुई तो उन्होंने स्वयं कोरियोग्राफी करने का निर्णय लिया और सबसे पहले वो असिस्टेंट कोरियोग्राफर के रूप में जानी जाने लगी। उसके बाद साल 1974 में आई फिल्म गीता मेरा नाम से वो स्वतंत्र कोरियोग्राफर बन गई और उन्हें जो सबसे ज़्यादा ख्याति मिली वो मिली साल 1986 में प्रदर्शित फिल्म नगीना से। और ये फिल्म में जो गाना था मैं तेरी दुश्मन, ये गाना उनकी ज़िंदगी के लिए मील का पत्थर साबित हुई और श्रीदेवी को उन्होंने इस गाने पर डांस कराया। ये गाना इतना हिट हुआ कि इसकी प्रसिद्धि सरोज जी को जितनी मिली उतनी ही श्रीदेवी को भी।

इशारों पे नचाया सरोज खान जी ने फिल्म मिस्टर इंडिया में, जो कि साल 1987 में प्रदर्शित हुई। और ये गाना इतना चर्चित हुआ कि आज भी आप सुनते हैं तो श्रीदेवी जी का बेहद खूबसूरत डांस इस गाने पर याद आ जाता है। और असल में जगह अगर हम बात करें तो इस गाने में उन्हें थिरकाया था सरोज खान जी ने।

श्रीदेवी को अपने अभिनय के साथ साथ डांस के जरिए बेहद चर्चित करवाया। सरोज खान जी ने वहीं साल 1988 में माधुरी दीक्षित को तेजाब फिल्म के एक गाने के जरिए पूरे देश विदेश में चर्चित किया। सरोज खान जी ने मोहिनी नाम से इस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया और माधुरी दीक्षित रातों रात स्टार बन गई इस फिल्म के बाद। और ये गाना कोरियोग्राफ किया सरोज खान जी ने और ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ। और जितना गाना सुनने में लोकप्रिय हुआ उतना ही ये गाने में जो उन्होंने नृत्य किया था वो नृत्य भी अपने आप में यादगार रहा। और सरोज खान जी के जीवन का ये भी एक ऐसा नृत्य रहा जो उन्हें चर्चित करने में बहुत ही सहायक रहा।

0: इंतजार।
1: कौन है
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार?
1: हाय।

तो शुद्ध माधुरी दीक्षित के फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने में उनके नृत्य की जितनी भूमिका है वो अपने आप में ख़ास है, हर कोई जानता है। लेकिन उन्हें जो है अपने इशारों पे थरका कर सरोज खान जी ने उनकी गीतों को यादगार बना दिया, अमर कर दिया। मिस्टर इंडिया हो, बेटा, देवदास, अंजाम, खलनायक जैसी कई फिल्में हैं जिसमें बेहतरीन डांस किया माधुरी दीक्षित ने और कोरियोग्राफ किया सरोज खान जी ने।

अशुतो, बेटा फिल्म का जो गीत है धक धक करने लगा, इस गीत के जरिए भी बेहद लोकप्रिय हुई माधुरी दीक्षित। इस गीत के बाद वो धक धक गर्ल के नाम से जानी जाने लगी।

तो श्रोताओं, 40 साल के करियर में सरोज खान जी ने लगभग 2000 गाने कोरियोग्राफ किए। उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सरोज खान जी ने नच बलिए उस्तादों के उस्ताद, नच ले वे विद सरोज खान, बोगी वोगी, झलक दिखला जा जैसे कई रियलिटी शोज में बतौर जज की भूमिकाएं निभाई और कई नई प्रतिभाओं को सामने लाने में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया।

तो श्रोता, बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा बड़ा स्टार हो जिसे सरोज खान ने डांस ना कराया हो। हर किसी को अपनी ताल पर नचाने वाली सरोज खान जी पूरे देश में डांस मास्टर के नाम से जानी जाती थी। लोग सम्मान के साथ उन्हें मास्टर जी कहकर पुकारा करते थे। करिश्मा कपूर हो, उर्मिला मातोंडकर हो, ऐश्वर्या रॉय, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर और भी न जाने कितनी दिग्गज अभिनेत्रियों को प्रसिद्धि दिलाने में अहम भूमिका निभाई सरोज खान जी ने।

जाएंगे कि वो हमेशा नृत्य का जब भी जिक्र आएगा तो याद आएंगी एक जानी मानी दिग्गज महान नृत्य निर्देशिका के रूप में सिर्फ और सिर्फ सरोज खान जी। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हम एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज मेरी पसंद का सफ़र यहीं तक, और अब इजाज़त दीजिए अंजू पांगती को भी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी घर संसार।

स्वागत है मैंने आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार के आज के अंक में। सभी श्रोता सखियों को आपकी सखी किरण बिष्ट का प्यार भरा नमस्कार। चलिए मैंने करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। आज की पहली चर्चा संतुलित जीवन सफल जीवन के विषय में आपके बात साथ बातचीत के साथ। बहनों कहते हैं कि प्रकृति में अगर सब कुछ अच्छा चलता रहे तो उसके लिए प्रकृति के सभी घटकों में संतुलन होना जरूरी है। अगर एक भी घटक में संतुलन बिगड़ा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है।

बहुत तेज वर्षा होती है तो कभी बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है, और यदि सब कुछ सही चले तो सारे मौसम अपने समय पर होते हैं। और बनो ठीक उसी तरह यदि हम मानव भी अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हमें भी अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाना होगा, क्योंकि हमारा जीवन भी सही तरीके से चलने के लिए संतुलन और अपने आसपास के परिवेश के साथ सामंजस्य की मांग करता है। अब मैंने बात आती है कि आखिर जीवन में कहाँ और कब हमें संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि दिखने में तो लगता है कि हाँ हमारा जीवन सही है, हम रोज ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं और हमारा दैनिक कार्यक्रम सब सुचारू ढंग से चल रहा है, लेकिन जीवन में कई बार परेशानियाँ आती हैं तो उस समय हमें एहसास होता है कि हाँ हमारे जीवन में अगर हमने ये गलती ना की होती तो शायद हमें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो बहनों इसका एक सीधा जवाब मैं ये भी देती हूँ आपको कि अगर हम मानो अपने जन्म के दिन से ही अपने आसपास के परिवेश के साथ संतुलन बनाते चले आ रहे हैं, ये बात आप भी मानेंगी, क्योंकि जिस तरह माँ के गर्भ में रहने पर शिशु पूरी तरह से माँ के शरीर पर निर्भर रहता है, भोजन के लिए भी अपने श्वासों के लिए भी, लेकिन जन्म लेते ही वह शिशु अपने जीवन को बचाए रखने के लिए खुद सांस लेनी होती है उसे, तो वह अपने फेफड़ों, अपनी श्वसन नली और नाक के साथ संतुलन बनाते हुए कैसे जन्म के कुछ क्षणों बाद ही खुद से सांस लेने लगता है। तो मैंने ठीक उसी तरह जीवन जीने के दौरान विभिन्न अवसरों पर हमें अपने आचरण, अपने खान पान, अपनी बोली भाषा, अपने खर्चों और दूसरों के साथ अपने व्यवहार और अपने जीवन जीने के तौर तरीकों में सामंजस्य व नियंत्रण रखकर जीवन में संतुलन बनाया जा सकता है। मैंने यदि हम ये सोचें कि ये हमारा जीवन है, ये हमारा शरीर है, जैसे चाहें हम इसे जिएंगे, जैसे चाहे अपने शरीर के साथ हम रहेंगे, और यह सोचकर हम खान पान में लापरवाही बरतेंगे तो इससे हमारा शारीरिक संतुलन बिगड़ेगा और इससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो वहीं अगर हमें फिजूल खर्ची की आदत है तो हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है और आय व्यय में संतुलन बिगड़ने से भविष्य में हमें कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें अपने खर्चों में भी संतुलन बनाने की जरूरत है। और यदि हम गुस्सैल स्वभाव के हैं तो हमें हमारे गुस्से पर नियंत्रण करना नहीं आता और हम कभी भी किसी के भी सामने ऊंचे स्वर में बेअदबी से पेश आते हैं तो हमारा अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक दायरा भी घटने लगता है, लोग हमें नापसंद करने लगते हैं हमारे इस गुस्सैल स्वभाव के कारण, और इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं। मानो जीवन में केवल सुविधाएं ही अच्छा व संतुलित जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो कि आजकल सभी के पास है, बिना सुविधा के कोई नहीं है, लेकिन जीवन में संतुलन होना, हमारे रोज़मर्रा के कामों में, रोज़मर्रा के आचरण में संतुलन होना संतुलित जीवन और सुखी जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। मानो जीवन में हमें रोज नित नए सबक सीखने को मिलते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, जो कि जीवन को संतुलित तरीके से जीने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। इसलिए जीवन में मिलने वाले सबक हमें हमेशा याद रखने चाहिए, अपने रोज़ाना जीवन में होने वाले क्रियाकलापों, घटनाओं से सबक लेकर संतुलित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की देखा देखी करने से खुद का ही नुकसान होता है। अपनी क्षमताओं का आकलन करके संतुलित जीवन जीकर अपने जीवन को सफल बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो बहनों ये थी थोड़ी बातचीत संतुलित जीवन सफल जीवन विषय पर। आइए आप कार्यक्रम में सुनते हैं।

0: मैंने मानसून का मौसम वृक्षारोपण के लिए अनुकूल होता है, इसलिए जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत वनों में वृक्षारोपण व वृक्षों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जा सके और उनकी देखभाल हो सके। साथ ही वनों का संरक्षण कर हरियाली की मात्रा बढ़ाई जा सके। बहनों, वन हमेशा से ही हम मनुष्यों के लिए मददगार रहे हैं, जिनसे हमें कभी आश्रय, कभी भोजन, पानी व अन्य लाभदायक वस्तुएं हमेशा से प्राप्त होती रही हैं। तो ऐसे में हमारा भी ये दायित्व है कि हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। वनों को किस तरह से हम संरक्षित करने में अपना योगदान दे सकते हैं, इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं सुरक्षित वन तो सुरक्षित हम विषय के अंतर्गत सुश्री अनिता गनवाल से हमारी ये क्षेत्र संकलित बातचीत। स्वागत है अनिता जी आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
1: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जैसे कि अनिता जी, हम जानते हैं कि जुलाई का पहला हफ्ता 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वनों के संरक्षण की बात हो रही है। आजकल हम देखते हैं कि अक्सर पर्यावरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न जो कारक हैं, उनके संरक्षण व संतुलन की बात करते हैं, फिर चाहे वो जल हो, वायु हो, प्राकृतिक खनिज हो या फिर हमारे वन। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुरक्षित वन तो सुरक्षित हम वाक्य हमें किस तरह से और क्यों वनों को सुरक्षित रखने के विषय में चेतावनी दे रहा है।
1: जी मैम, मैं इस पे कहना चाहूंगी कि सुरक्षित वन तो सुरक्षित हम कि हमें चेतावनी देता है कि वन केवल पेड़ों पौधों का समूह नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। वन हमें शुद्ध वायु, जल संरक्षण, मिट्टी की सुरक्षा, औषधियाँ और अनेक जीव जंतुओं को आश्रय भी देते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे लिए जीवनदायिनी भी है। और आज विकास के नाम पर वनों की कटाई, खनन, सड़क निर्माण, अन्य गतिविधियों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि वन नष्ट होंगे तो जल संकट, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ेगा। इसीलिए हमें वनों को बचाने के लिए वृक्षारोपण

0: होती है, अवैध कटान रोकना और वनाग्नि से बचाव करना, और समाज के हर व्यक्ति को वन संरक्षण से जोड़ना होगा। वन जब सुरक्षित रहेंगे तभी मानव और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी।
1: अनिता जी, अभी आपने ये कहा कि हमें वनों को बचाने के लिए, वनों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता लाना जरूरी है, तो हम किस तरह से वनों के संरक्षण के विषय में जन जागरूकता ला सकते हैं?
0: जी, कोई वनों के संरक्षण के लिए हमें जन जागरूकता लाने के लिए गांव स्तर पर बैठकें, जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। लोगों को वनों के महत्व, पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में उनको बताना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। और साथ ही साथ स्कूलों और महिला समूह, वन समितियों और स्थानीय समुदाय को जोड़कर वृक्षारोपण, अग्नि रोकथाम और जंगलों की देखभाल में भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। जब लोगों को यह समझ आएगा कि वन हमारे जीवन और आजीविका का आधार है, तो वे स्वयं संरक्षण के लिए सहयोग करेंगे।
1: अनिता जी, अभी आपने कहा कि हमें वनों को बचाने के लिए, वनों के संरक्षण के लिए ग्रामीणों से भी सहायता लेनी चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गांव में वन ग्रामीणों की आजीविका के साधन के साथ साथ उनके ईंधन की आपूर्ति भी करते हैं, तो ग्रामीण किस तरह से बिना वनों को नुकसान पहुंचाए वनों से अपने लाभ की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं और वनों के संरक्षण में अपनी भूमिका अदा भी कर सकते हैं, इस बारे में भी जरा प्रकाश डालिए।
0: जी, गांवों में वन ग्रामीणों की आजीविका, ईंधन, चारा और छोटी छोटी जरूरतों का महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण बिना वनों को नुकसान पहुंचाए वनों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें वन संसाधनों को संतुलित और सही उपयोग करना चाहिए, जैसे कि लकड़ियां हैं, गिरी हुई टहनियां, इनका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। आजकल तो अब हम पिरुल को भी एक ईंधन के रूप में भी हम ला रहे हैं, और इससे हरे जो पेड़ हैं उनकी कटाई से बचें, घास, पत्तियां, फल, औषधि पौधे और अन्य वन उपज को नियम के अनुसार एकत्र करें। साथ ही नए पौधे हमें लगाना चाहिए, पेड़ों की देखभाल करना चाहिए, वनों को आग से बचाव करना चाहिए, वन समितियों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इस तरह ग्रामीण अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और वनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। वन और ग्रामीण जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए संरक्षण में ग्रामीण की भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है।
1: अच्छा अनिता जी, हम लोग जब हर साल वन महोत्सव मनाते हैं, पेड़ लगाते हैं, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से ही वन संरक्षित नहीं हो पाएंगे, हमें उन वनों की देखभाल करनी होगी, उन पेड़ों की देखभाल करनी होगी, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके जरिए हम अपने लगाए हुए पेड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जंगल बनने के लिए उनका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है।
0: वन संरक्षण केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लगाए गए प्रत्येक पौधे की देखभाल और उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम पौधे लगाकर उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं तो हमारा प्रयास अधूरा रह जाता है। पौधे की नियमित देखभाल, समय पर सिंचाई, पशुओं से सुरक्षा, आग से बचाव, अवैध कटान पर रोक, यही सच्चे अर्थों में वन संरक्षण है। एक पौधा लगाना पुण्य का काम है, लेकिन उसे वृक्ष बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: अच्छा अनिता जी, अक्सर हमारे पर्वतीय जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं, है ना, तो जिसके कारण बहुमूल्य वनौषधि के साथ साथ पेड़ों व जंगली पशु पक्षियों को भी बहुत नुकसान होता है।

0: कि जो साफ सफाई करनी चाहिए या फिर फायर लाइन में डेवलप करना चाहिए, जंगल हर जंगल की सीमाओं पे, या फिर ये कह सकते हैं कि हर वन पंचायत की सीमाओं पे हमें फायर लाइन बनानी चाहिए ताकि आग ना फैल सके। और सबसे बड़ा अगर हम इसमें ये एक उपाय और हो सकता है जो मैं कई बार एक समाधान के रूप में या फिर एक सुझाव के रूप में भी देते रहती हूँ या बताते रहती हूँ, इसमें ये हो सकता है कि जैसे आग का सीजन आ रहा तो उससे पहले जंगलों की घास, जहाँ पे हमारी वन पंचायतें हैं वहाँ पे घास कट जाए। अगर घास कट जाएगा तो पिरूल से ज़्यादा अभी आजकल घास बड़ी हो रही है, तो वो एक फ्यूल का काम करती है जंगलों में आग लगाने का। तो अगर जब घास कट जाएगी तो कहीं ना कहीं आग को फ्यूल नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो आग नहीं फैलेगी, तो इससे आग की घटनाएं भी कम हो सकती हैं। और साथ ही साथ जो ग्रामीण हैं और वन समितियां हैं, जो वन विभाग के बीच सहयोग होना बहुत जरूरी है। आग लगाने की सूचना तुरंत वन विभाग को देनी चाहिए हमें, या जो हमारे ग्रामीण हैं, और आसपास के जो लोग मिलकर आग को फैलने से रोकने में मदद कर सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि वन केवल पेड़ नहीं है बल्कि हमारी हवा, पानी, पशु पक्षी और जीवन का आधार है, इसीलिए वनों को सुरक्षित रखना हम हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
1: अनिता जी, वन संरक्षण सप्ताह चल रहा है, आप हमारे श्रोता बहनों को वनों के संरक्षण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं अपने प्रिय साथियों से और जो हमारे श्रोता हैं उनसे यही कहना चाहूंगी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कि जो वन है वो केवल पेड़ पौधे नहीं है बल्कि हमारे जीवन का आधार है, और हमारी दैनिक जरूरतें हैं वो हमारे जंगलों से ही हमें पूरी होती हैं, और उन्हें बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें सीखना होगा जो हमारे जंगल हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ना आग लगाएं, ना लगने देंगे, ना पेड़ कटेंगे, ना कटने देंगे, वन बचाएंगे, भविष्य बचाएंगे, सुरक्षित वन, सुरक्षित हम।
1: तो अनीता जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और हमें वन संरक्षण के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका धन्यवाद मैम।
2: सुरक्षित वन तो सुरक्षित हम, इस विषय पर बहनों अभी आप सुश्री अनीता गनवाल सामाजिक कार्यकर्ता से हमारी ये क्षेत्र संकलित बातचीत सुन रहे थे। आइए बहनों इस बातचीत के बाद सुनते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश।
3: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
4: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
3: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
4: ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
3: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
4: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मैनू रिमझिम फुहारों का मौसम आ गया है। ठंडी हवाओं के साथ मिट्टी की सौंधी महक वातावरण को महका रही है। धीरे धीरे हरियाली की चादर भी पूरी वादी को ढकती जा रही है। मैनू मानसून का मौसम जहां कड़कती गर्मी से हमें राहत दे रहा है, तो वहीं बरसती बूंदें मन को सुकून दे रही हैं और फैलती हरियाली आंखों में ठंडक का एहसास करा रही है, और हम इस तरह मानसून का आनंद लेने के लिए तैयार बैठे हैं। पर मैनू मानसून जहाँ हमें गर्मी से राहत देता है, वहीं वातावरण में अत्यधिक मात्रा में नमी के होने से हमें कई तरह की सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वातावरण में मानसून के कारण होने वाली अत्यधिक नमी से आर्द्रता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे वातावरण में कीटाणु पनपते हैं, जिसके कारण हमें कई तरह के संक्रमणों का सामना भी करना पड़ता है। तो मैंने आज के फैशन फ्राइडे के अंतर्गत हम बात करेंगे मानसून के मौसम में बालों की देखभाल के विषय में। मैंने अक्सर आपने गौर किया होगा कि मानसून का मौसम आते ही हमारे सिर के बाल धीरे धीरे बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, और ये बाल कई बार इतनी मात्रा में गिरते हैं कि पूरी कंघी ही बालों से भर जाती है। और ऐसा नहीं है कि दिन में बाल सिर्फ एक बार ही गिरते हैं, हर बार जितने बार हम एक दिन में कंघी करते हैं उतने बार फिर उतनी ही मात्रा में ढेर सारे बाल गिरते हैं, जिसके कारण कई बार हम बालों को कट

भी करते हैं, उतने बार फिर उतनी ही मात्रा में ढेर सारे बाल गिरते हैं, जिसके कारण कई बार हम बालों को कटवा लेते हैं ताकि हमारे बाल कम गिरें, या फिर अगर गिरते भी हैं तो कम लगें। लेकिन बरसात के मौसम में बाल गिरने से बचाने के लिए उन्हें कटवा लेना कोई समाधान नहीं है। हमें सही तरीके से अपने बालों की देखभाल करनी होगी। मैंने मानसून के मौसम में अक्सर बारिश की नमी से और पसीने से हमारे बाल भीगे रहते हैं, जिसके कारण सिर की त्वचा में नमी रहने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि त्वचा में जब नमी रहती है तो वो संक्रमण के कारण हमारी बालों की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाल गिरते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में ध्यान रखें कि गीले बालों को एक तो अच्छी तरह से ज़रूर सुखाएं, और दूसरा बालों में गंदगी जमा न रहें। बालों को कम से कम एक दिन छोड़कर ज़रूर धोएं, ताकि पसीने से होने वाले संक्रमण से बचा जा सके। और मैंने बरसात के मौसम में न केवल बाल गिरते हैं बल्कि हमारे बालों में बहुत सारी रूसी भी हो जाती है। सिर की रूसी हमारी सिर की मृत त्वचा से होती है, जिसे बार बार बाल धोकर साफ करना होता है। अगर हम लंबे समय तक या फिर हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बाल धोने के आदि हैं तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे सिर की मृत त्वचा पसीने और धूल मिट्टी के संपर्क में आकर रूसी के रूप में पनपने लगती है, जिससे सिर की त्वचा को सांस लेने का मौका नहीं मिलता और इससे हमारे बाल गिरने लगते हैं, और फिर हम एंटी डेंड्रफ शैम्पू की तलाश करने लगते हैं। मैंने बरसात के मौसम में अगर बालों को स्वस्थ रखना है तो हमें नियमित अंतराल पर गुनगुने तेल की मालिश के साथ मॉइल्ड शैम्पू से सिर को साफ रखना होगा, ताकि बरसात के मौसम में बालों की समस्याओं से बचा जा सके, और जहाँ तक हो सके बरसात के मौसम में कभी भी गीले बालों पर कंघी नहीं करनी होती है, क्योंकि अगर गीले बालों में हम कंघी करेंगे तो एक तो हमारे बाल ज़्यादा टूटेंगे और दूसरा वो दो मुंही भी हो जाते हैं। इसलिए और साथ ही कई बार हमें आदत होती है कि हम अपने बालों को तौलिए से झटक कर सुखाते हैं, उसके कारण भी हमारे बाल टूटते हैं और बालों में बाल दो मुंहे हो जाते हैं। इसलिए बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें। अब ये नहीं कि हम ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगे अगर हमारे बाल गीले हैं। हाँ, ड्रायर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। जब कभी बाहर बारिश हो रही हो और हमारे बालों को हमें सुखाना हो, ठंड लगने का डर हो, तो हम ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम रोज़ाना ड्रायर का इस्तेमाल करें, क्योंकि रोज़ाना ड्रायर के इस्तेमाल करने से भी बाल रूखे होकर के टूटने लगते हैं। तो बहनों, ये थी थोड़ी बातचीत मानसून के मौसम में बालों के स्वस्थ रखने के बारे में। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

मैंने उस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। मैनो हम आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है इस विषय पर आप अपने विचार हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर भेज सकते हैं। आपके सुझावों आपके विचारों को प्रत्येक माह घर संसार कार्यक्रम के अंतिम अंक में बहनों की चिट्ठी में शामिल किया जाएगा। और बहनों इसी के साथ हमारा आज का घर संसार कार्यक्रम यहीं पर समापन करने की अपनी सखी किरण बिष्ट को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, दोपहर के 1 बजने को हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मिली मंजूरी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालन पर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त। प्रत्येक संचालक को जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा। प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक आयोजित होगा 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा। शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले रोड़ी बेलवाला में तैयारियां तेज, निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए गए निर्देश। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL के निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी देते हुए राज्य की प्रमुख जल विद्युत और पंप स्टोरेज परियोजनाओं को आगे बढ़ाने संबंधी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सचिवालय में मुख्य सचिव व UJVNL के अध्यक्ष आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को राज्य सरकार के शासनादेश के अनुरूप समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। निदेशक मंडल ने 81 मेगावाट क्षमता की आराकोट त्यूणी जल विद्युत परियोजना और 600 मेगावाट क्षमता की इच्छाड़ी पंप्ड स्टोरेज परियोजना के पहले चरण की आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 300 मेगावाट क्षमता की लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजनाओं के शियर जोन उपचार से जुड़े अतिरिक्त कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में सिंचाई विभाग से हस्तांतरित सॉन्ग पंप स्टोरेज परियोजना की आवश्यक औपचारिक स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त करने और लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालकों द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार और मनमानी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के किसी भी संचालक को यात्रा मार्ग पर संचालन की अनुमति नहीं होगी। इन शिकायतों पर पहले भी कार्रवाई की गई, लेकिन अब ऐसी घटनाओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिलाधिकारी विशाल शर्मा ने निर्देश दिए कि प्रत्येक घोड़ा खच्चर चालक को जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण के संचालन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
1: श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कभी कभी घोड़े खच्चर की सेवा लेनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं जहां पर घोड़े खच्चरों के जो संचालक हैं, जो हॉकर हैं, उनके द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है और जो प्रकरण संज्ञान में उसमें कार्रवाई भी की, परंतु इस तरीके के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो इस संदर्भ में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो भी हॉकर घोड़े खच्चर का संचालन करेंगे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जिला पंचायत में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, फाइन भी होगा, अन्य विधिक कार्रवाई भी होगी। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा, सभी होकर अपना रजिस्ट्रेशन जिला पंचायत रुद्रप्रयाग में करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार।
0: पौड़ी विकास भवन सभागार में विकसित भारत जी राम जी मिशन पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रतिभागियों को मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं बल्कि टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आधुनिक तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा विकसित गाँव का निर्माण करना है।
2: इसमें जो योजना जो पहले चलती थी उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये नई योजना का लॉन्चिंग हुई है और इसमें बहुत सारे काम 200 से ऊपर काम इसमें सम्मिलित किए गए हैं जिससे कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभाओं का पूर्ण रूप से विकास किया जाए। और जो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनना है, इस दिशा में हमको प्रथम इकाई के रूप में अपने ग्राम सभाओं को विकसित करना होगा और हमारी ग्राम सभाएं विकसित होंगी तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो भारत जो है 2047 में विकसित हो जाएगा।
0: मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि मिशन के अंतर्गत अब रोजगार के अवसरों का दायरा और अधिक व्यापक किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना में डिजिटल निगरानी प्रणाली, ई KYC आधारित सत्यापन, जियो टैगिंग, ऑनलाइन

0: मस्टर रोल तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पारदर्शी भुगतान व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इससे कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर मेला प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मेले के शुभारंभ से पहले सभी निर्माण कार्य, सड़क सुधार और यातायात संबंधी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेला अधिकारी सोनिका के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक निशा यादव और अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में मेला प्रशासन और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने रोड़ी बेलवाला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान हाईवे से पार्किंग क्षेत्र तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रैंप निर्माण, बैरिकेडिंग, यातायात नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कांवड़ियों की सुरक्षा और निर्बाध आवागमन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि इस बार कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार ने सेवा, सुशासन और समर्पण की भावना के अनुरूप प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये कार्यक्रम जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के

0: का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। साथ ही आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
1: 4 जुलाई से प्रदेश व्यापी अभियान जो चलाया जा रहा है, उस सेवा सप्ताह के लिए जिला नैनीताल में विकास खंडवार रोस्टर डिसाइड कर लिया है। बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होगा और जो प्रमुख 2 दर्जन विभाग हैं वो स्टॉल्स का संचालन करेंगे और उसके साथ जन उपयोगी सुविधाएं हैं वो मौके पर ही निस्तारित की जाएंगी। इसके अलावा जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और जो उपलब्धियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार की, उस पर भी परिचर्चा की जाएगी।
0: भारतीय वन सेवा के आंध्र प्रदेश कैडर के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खजूरिया ने देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने भारती का स्थान लिया है जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुई थी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर खजूरिया ने अकादमी के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और संस्थान में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने अमृतकाल के लक्ष्यों के अनुरूप भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षण को और प्रभावी व आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता जताई। डॉक्टर खजूरिया इससे पहले आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मिली मंजूरी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालन पर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त। प्रत्येक संचालक को जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा। प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक आयोजित होगा 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा। शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले रोड़ी बेलवाला में तैयारियां तेज, निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए गए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं ताहिर फराज के गजल के साथ, आवाज ए हरिहरन की।

और अब आखिर में पेश है नसीम अजमेरी की गजल मिताली सिंह की आवाज में।

मिताली सिंह के गाए से। उनकी आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1320।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी जी लिखते हैं,
1: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका

0: उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
1: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
1: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
1: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
1: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
1: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए, और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर, यानी 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है, और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।

0: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
1: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
2: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
3: हाँ, 2000 साल पहले।
2: नानी माँ?
4: हाँ निधि।
2: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
4: अरे यहीं हूँ। आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
2: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
4: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
2: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
4: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
2: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
4: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
2: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
4: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
2: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
4: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
2: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
4: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है, है ना?
2: मामा जी, मामा जी।
0: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
2: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
0: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
0: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
0: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
0: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
0: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं।

0: कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी।

और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा।

0: बेचैनी।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
2: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
3: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
3: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वो राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
5: अलख निरंजन।
6: साधु बाबा।
5: अब अच्छा,
6: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।

0: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहां। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
1: क्या?
0: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
1: है?
0: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: बहुत बड़ी फौज है।
0: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
1: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
0: अच्छा,
1: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
0: है? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
1: बिल्कुल है।
0: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
1: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
1: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
0: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था,

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनु बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। पहले सुनिए गढ़वाली लोकगीत

जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं पगला फल लागे अति दूर। बानर की घोई मासु खाचे, छिल छाली हड खाचे घोई, विपतोनी घर

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हरा कर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग

0: की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है।

0: सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुँच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज जानकारी का विषय है अनाज का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर श्याम नाथ।
4: कृषक बंधुओं, हमारे देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा किसान वर्ग की उन्नति और खुशहाली के लिए अधिक से अधिक अनाज उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इसके साथ साथ अनाज के सुरक्षित भंडारण का उपयोग उतना ही महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि अधिकांश गांवों में कीट रहित अनाज भंडारण के गोदाम नहीं है, तथा भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़ यूपी के अनुसार अनाज का उचित भंडारण ना होने से पैदावार का लगभग 10-12% कीड़े चूहे अन्य जीव जंतु व नमी द्वारा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष अगर देखें तो हम देश में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से भी ज़्यादा नुकसान होता रहता है। घरों में अनाज किसान आजकल साधारणतः पुराने भंडारण तरीकों से बर्तन का उपयोग करके या उपकरणों का उपयोग करके करते हैं, जिससे अनाज खराब हो जाता है। वैज्ञानिक भंडारण में तापमान, नमी, कीट और बाहरी कारकों का उचित प्रबंधन किया जाता है, जिससे अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाया जा सके। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि अनाज को नष्ट या खराब करने के कौन कौन से कारण होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हमारा अनाज सही से सूखा नहीं रहेगा तो वो जल्दी से खराब होने का चांस रहता है, तो हमें नमी वाले जगह में अनाज भंडारण नहीं करना चाहिए। घरों में अनाज को खुला नहीं रखना चाहिए ताकि वो नमी को अपने अंदर न अवशोषित करे। अनाज को ढोने वाले वाहनों का अगर हम कभी कभी प्रयोग करते हैं तो वो साफ होना चाहिए, और पुरानी बोरियों में अनाज ढोने या भंडारण करना से भी अनाज को नष्ट होने का चांस बनता रहता है, क्योंकि उसमें संक्रमण आ जाता है। अनाज रखने वाली जगह को सफाई ठीक ढंग से नहीं करने से भी अनाज नष्ट होने की संभावना होते हैं। उस जगह को कीट रहित करना चाहिए, उसके लिए कुछ छिड़काव मैं आगे आपको लोगों को बताऊंगा। अनाज को विधि अनुसार भंडारण करने से और पुराने नए अनाज को मिलाने से भी कुछ दाने खराब हो जाते हैं, अनाज नष्ट हो जाता है। अब हम जानते हैं कि अनाज का जो वैज्ञानिक भंडारण है किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके भी कुछ प्रक्रिया है जिसको सभी किसान भाइयों को उसको करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। जैसे कि मड़ाई और गहाई के बाद जो दाना या अनाज हमें मिलता है उसकी सफाई और छटाई अच्छे तरह से करना चाहिए, और उसमें ताकि जो धूल, मिट्टी या कोई अवांछनीय कण हैं उनको हम अलग कर सकें, और छटाई की प्रक्रिया के दौरान खराब, टूटे या क्षतिग्रस्त कीटग्रस्त दानों को भी हम अलग कर सकें। तो सफाई और छटाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसका अच्छे ढंग से भंडारण करेंगे तो उसमें कीट कम लगेंगे। तो जैसे सफाई और छटाई होने के बाद अनाज को सुखाना भी बहुत ज़रूरी है, और सुखाने के पश्चात यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि 10-12% जो नमी है वो अनाज में मौजूद होनी चाहिए, और नमी की मात्रा नियंत्रित करने के लिए कुछ हमारे पास उपकरण भी हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आमतौर पर लोग सूर्य के प्रकाश से सुखाते हैं, पर कुछ यांत्रिक ड्रायर भी आते हैं, जैसे हमारे संस्थान ने एक सोलर ड्रायर का विकास किया है, जिसकी मदद से हम अनाज को या किसी अन्य फसल को दाने को आराम से सुखा सकते हैं। और जब हम अनाज को किसी स्थान पर सुखाते हैं तो वहाँ पे ये सुनिश्चित कर लें कि वायु संचार अच्छी तरह से होना चाहिए, और अगर हम कोई अनाज भंडारण कर रहे हैं तो भंडारण के समय हमें कीटनाशक या कोई प्राकृतिक उपचार का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे प्राकृतिक उपचार की अगर हम बात करें तो सूखे हुए नीम की पत्तियां, नमक, हल्दी या तंबाकू के जो पत्ते होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम अगर उसमें अनाज में मिला के करते हैं तो क्या होता है कि उनके गहक से या गंधक से, महक से कीट कम लगते हैं, तो इनका भी हमें खास तौर पे ध्यान देना चाहिए, और नियमित रूप से भंडारण स्थल की सफाई और निगरानी अवश्य करनी चाहिए। तापमान और आर्द्रता नियंत्रण करने के लिए भंडारण का स्थान उचित, अब हमें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि किस जगह हम भंडारण को वो जगह सुनिश्चित कर रहे हैं। अब मैंने जैसे पहले रोटेशन योजना की बात किया था, तो रोटेशन में क्या है कि अगर आपने कोई अनाज भंडारण करने के लिए रखा है और वो कुछ टाइम बाद, जैसे 2-3 महीने के बाद आपको लगता है कि इसको एक बार सुखा लेना चाहिए, या फिर आपने जो पुराने अनाज रखे हैं उनको हम अब पहले इस्तेमाल कर लें, तो ये रोटेशन योजना कहलाती है। तो जो आपके नए जो अनाज रखे हैं वो क्या होगा कि आप उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, और जो आपने पहले अनाज भंडारण किया था उसको आप पहले इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब अभी इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस रोटेशन योजना से क्या होगा कि आपकी जो भंडारण है वो बनी रहेगी और पुराने को आप इस्तेमाल करते रहेंगे और नए को आप भंडारण करते रहेंगे, तो ये रोटेशन योजना है। और अब कुछ बातों का हमें वैज्ञानिक तरीकों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अनाज के जो बोरे होते हैं उसमें अच्छी तरह से पैक करना चाहिए। आजकल के बोरे भी ऐसे आते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि वैक्यूम पैकेजिंग टाइप के होते हैं, तो उन बोरों में भी अगर आप बंद करके रखें तो ऑक्सीजन कम से कम मिलता है ताकि अनाज को ज़्यादा देर तक रखा जा सके। अनाज का जो कक्ष है होता है, जो तापमान जिसमें हमको नियंत्रित करने की जो बात किया, तो ज़्यादातर देखा जाए कि ठंडे में रखना चाहिए, और अनाज में जो कीटाणु रोगाणु और कंकड़ पत्थर वो सब नहीं होने चाहिए। तो ये सब जो एक्चुअली वैज्ञानिक तरीके तो हम कह सकते हैं, पर इन तरीकों को अपनाने के लिए हमें कुछ न कुछ वैज्ञानिक यंत्र यूज करने पड़ेंगे, उपयोग करना पड़ेगा उनका। अनाज को स्वच्छ, सूखे और ठंडे रखने चाहिए। अनाज को भंडारित करने से पहले गोदाम या कोठी को अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। नए अनाज को पुराने अनाज के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नए अनाज में जो गतिविधियाँ होती रहती हैं वो पुराने की अपेक्षा कम होंगी, तो पुराने अनाज में जो गतिविधियाँ होंगी वो बहुत हो चुकी होंगी। अगर उन दोनों को मिला देंगे तो क्या है कि जो नए और पुराने में अधिक खराब होने का चांस रहेगा। अगर पुराने को आप अलग रखेंगे और नए को अलग रखेंगे तो पुराने वाला हो सकता है कि जल्दी ख़राब हो जाए और नए वाला को आप अधिक देर तक संरक्षित कर पाएंगे। और अनाज को ज़्यादातर लोहे की टंकियों में भी, जैसे आजकल GI के कंटेनर आते हैं, और उनको अगर उसका इस्तेमाल करें तो अच्छी तरह से उनका साफ सफाई करके दिन में कम से कम धूप में सुखा देना चाहिए, 2-3 दिन के लिए सुखा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी आपने धोया और सुखाया और मॉइस्चर उसके अंदर ही रह गया, अनाज में वो मॉइस्चर आएगा और वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये लोहे और जो प्लास्टिक के कंटेनर हैं या टंकियां हैं उसको धो के अच्छे से सुखाना चाहिए। घरों में जो अनाज के भंडारण करते हैं उसमें नीम की सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और हमने ये भी देखा कि लोग हल्दी के कुछ पैकेट्स बना के या फिर चूने के कुछ पैकेट्स बना के ऐसे उसमें रखते हैं। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक विधियां हैं, इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक विधियों का जो भी इस्तेमाल है वो वैज्ञानिक ढंग से ही करना चाहिए। अब किसान भाइयों को मैं कुछ आवश्यक सावधानियाँ बताना चाहता हूँ जिसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई कीटनाशक का अगर इस्तेमाल करना है तो वो निर्धारित मात्रा में ही करना चाहिए तथा विशेषज्ञों की सलाह से ही करना चाहिए, या उस कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए जो मात्रा बताई गई है उसमें लिखा गया है उसका ही उपयोग करना चाहिए। दवा का प्रयोग करते समय दस्तानों का उपयोग जरूर करें, ताकि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके हाथ मुंह में आँख में ना लगे। आकस्मिक जैसे दुर्घटना हो गई तो, जैसे अगर आँख में चले गए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या धोना चाहिए सबसे पहले तो। और जो हानिकारक कीटनाशक है उनका इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप कोई भी हानिकारक कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके अनाज में कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। तो हमें ज़्यादातर ये प्रयास करना चाहिए कि जो कीटनाशक हैं उसका इस्तेमाल कम करें, और उसकी जगह पे जो ये आजकल आधुनिक कंटेनर हैं या बैग्स हैं उनका उपचारित करके इस्तेमाल करना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम कहें तो अनाज का जो वैज्ञानिक ढंग है भंडारण खाद्यान्न सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे अनाज की बर्बादी को रोकी जा सकती है, जैसे कि हमने पहले बताया कि लगभग 10-12% अनाज की बर्बादी हो रही है अगर हम सही ढंग से नहीं करें। और अपने जितना भी हो सके, किसान अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो आप जो भी उपज कर रहे हैं उसको सही ढंग से और संरक्षित करके उसका साल भर इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो जो सीजन होता है, अभी जैसे खरीफ सीजन अभी जा रहा है और आपके पास हो सकता है धान आए या मक्का आए, भट आए या सोयाबीन आए, तो वो अभी आने के बाद उसका आप इस्तेमाल साल भर करेंगे और सही भंडारण के बाद ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि अपने जो भी उत्पाद रहें उनका वैज्ञानिक ढंग से भंडारण करें, और जो प्राकृतिक उपचार आप कर रहे हैं जैसे नीम की पत्तियां अगर मिला रहे हैं या कोई भी पत्ता मिला रहे हैं तो उसका सही से सूखना होना चाहिए। नमी को कम से कम अगर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जो वैक्यूम पैकेजिंग की जब मैंने बात किया, अगर उसमें से अगर कोई कर रहे हैं, अगर व्यावसायिक भंडारण कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाद्यान्न को रोटेशन में लाते रहें ताकि पुराना जो है वो पहले इस्तेमाल कर लें, रोटेशन में सुखाएं भी, ताकि मतलब आपको ये लगता होगा।

0: कि हाँ ये अब सुखाने का टाइम आ गया है, इसमें थोड़े से लग रहे हैं कुछ कीड़े, तो उनको आराम से निकाला जा सके।
1: अनाज का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्यामनाथ से जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, संध्या 7:30 पर आकाशवाणी देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर में आज सुनिएगा मोतीराम के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं, सिने जगत से के तहत सुनिएगा मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान के बारे में, और आज का इतिहास भी युवा साथी सुनेंगे। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान। इसके अलावा वृक्षारोपण हमारी जिम्मेदारी, इस विषय पर क्षेत्र संकलित कार्यक्रम प्रसारित होगा। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत में आज सुनिएगा घनश्याम वासवानी और शर्मा बंधुओं के गाए भजन। शाम 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम में आज की बातें होंगी ऊसर भूमि में धान की खेती विषय पर। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:40 पर। रात 9:15 पर इंद्रधनुष में और श्रोता फरमाइशी फिल्म नगमे सुनेंगे आपके अनुरोध पर कार्यक्रम के तहत रात 9:30 पर। रात 10:30 पर भी फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। रात्रि 8 बजे सबरस सुनिएगा सुगम संगीत का ये कार्यक्रम होगा, और इसके अलावा सुगम संगीत रात 10 बजे भी श्रोताओं को हम सुनवाएंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। आज के फनकार हैं मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तिग्मांशु धूलिया। तो श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर तिग्मांशु धूलिया एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं। उनके पास सिर्फ एक्टिंग का हुनर नहीं है, बल्कि वो डायलॉग्स राइटिंग करते हैं। फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी उन्हें महारत हासिल है। उन्होंने भले ही फिल्मों में छोटे रोल किए, लेकिन उन्होंने जो भी रोल किए वो यादगार रहे और उनका करियर शानदार रहा है। और आज एक ही फनकार के आप फनकार हैं। आज 3 जुलाई उनका जन्मदिन है, तो तिग्मांशु धूलिया को उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवाते हैं।

तो श्रोताओं, 3 जुलाई 1967 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे तिग्मांशु एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे और माँ प्रोफेसर थीं, और उत्तराखंड से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं, गढ़वाल क्षेत्र से वो हैं। और उनका एक भाई नेवी में है तो दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जज है। हालांकि तिग्मांशु का इंटरेस्ट हमेशा से एक्टिंग में रहा, इसीलिए उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करते ही दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थिएटर्स में मास्टर किया। और इसके बाद साल 1989 में पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई की ओर रुख किया। 1990 में फिल्म बैंडिट क्वीन से बतौर कास्टिंग डायरेक्टर करियर की उन्होंने शुरुआत की, और वो फिल्म स्टिफ अपर लिप्स में कैमियो करते हुए भी नज़र आए। कास्टिंग और कैमियो करने के बाद तिग्मांशु ने डायरेक्टर बनने की राह पर कदम आगे बढ़ाया। इलेक्ट्रिक

कानून और सरदार जैसी फिल्मों में वो बतौर असिस्टेंट उन्होंने काम किया। तिग्मांशु ने फिल्मों में निर्देशकों को असिस्ट करने के बाद छोटे पर्दे की ओर कदम बढ़ाया और कहानी एक कन्या की, हम बम्बई नहीं जाएंगे, जस्ट मोहब्बत, नया दूर जैसे सीरियल्स उन्होंने बनाए। और फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले जो उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा वो फिल्म थी हासिल, और ये उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी।

श्रुतों, तिग्मांशु धूलिया को सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिली वो फिल्म थी पान सिंह तोमर, और इस फिल्म में लीड रोल में थे जाने माने अभिनेता इरफान खान। ये फिल्म जो थी बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा साहिब बीवी और गैंगस्टर, बुलेट राजा, मिलन टॉकीज, यारा जैसी कई फिल्मों का वो निर्माण कर चुके हैं। तिग्मांशु धूलिया ने अपनी आज तक के सफल करियर में ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिल्म मेकिंग, डायलॉग्स राइटिंग और डायरेक्शन में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि उनमें एक्टिंग का भी हुनर है। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, मकबूल, हीरो, शाहिद, जीरो जैसी कई फिल्मों में अहम किरदार निभाए हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में रामधीर सिंह, शाहिद में मकबूल और हीरो में श्रीकांत माथुर और जीरो में अशोक सिंह जैसी फिल्मों के जो इन फिल्मों में अहम किरदार उन्होंने निभाए। और लेखन की बात करें तो साल 1998 में प्रदर्शित हुई मशहूर फिल्म दिल से के लिए तिग्मांशु धूलिया ने डायलॉग्स लिखे, जो कि बहुत ही चर्चित फिल्म रही और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी ये फिल्म प्रदर्शित हुई।

एक ही फनकार अभी आप सुन रहे थे। आज के फनकार थे जाने माने निर्देशक, निर्माता, लेखक, अभिनेता तिग्मांशु धूलिया। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। अपराह्न के बजे हैं 3। हम लेकर आए हैं सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगटे का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जानी कहिए तो एक मशहूर अभिनेता का चेहरा हमेशा हमारे सामने उभर कर आ जाता है, शायद आपके भी आ गया होगा। और वो दिग्गज मशहूर जाने माने अभिनेता हैं राजकुमार। सिनेमा जगत में दमदार अभिनय, संवाद, अदायगी और बेहद अलग अंदाज के लिए मशहूर रहे राजकुमार, जो सच में ही दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले राजकुमार थे। आज 3 जुलाई उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें श्रद्धा नमन करते हुए उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से सजा है आज का हमारा सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम।

तो श्रोताओं, राजकुमार का जन्म बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ 8 अक्टूबर 1926 को एक मध्यम वर्गीय कश्मीरी परिवार में हुआ। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार जी मुंबई के माहिम पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर काम करने लगे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में काम करते थे, वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता कुछ ज़रूरी काम के लिए आए और वो राजकुमार के साथ बातचीत करने लगे, तो उनकी जो बातचीत करने का अंदाज था, वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार को ये सलाह दी कि अगर आप फिल्मों में आ जाएं तो आप बेहद सफल हो सकते हैं। राजकुमार जी को फिल्म निर्माता की ये बात जच गई। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में बतौर अभिनेता बनने की ओर अपना रुख किया। साल 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में सबसे पहले बतौर अभिनेता राजकुमार को काम करने का मौका मिला। साल 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। साल 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में नजर आए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे और इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली। और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए।

0: तो श्रोताओं, 1952 से 1957 के बीच रंगीली के बाद अनमोल सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि, कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन सफल वो हुए महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया से। इसके बाद साल 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार जी ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाह वाही लूटने में वो सफल रहे।
1: दौलत पति ने तो आज लात है मारी, हरगिज़ न रुक

साल 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म में अपने सशक्त अभिनय के जरिए राज कुमार एक बार फिर से फिल्मी दुनिया में छा गए। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री थीं मीना कुमारी।

सुदों साल 1965 में बीआर चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म वक्त आई और इस फिल्म में अपने लाजवाब अभिनय से एक बार फिर राजकुमार फिल्मी दुनिया में छा गए। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया संवाद बेहद प्रसिद्ध रहा।

जिसमें जिनार सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर उनका दूसरा डायलॉग, चिनार सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ये डायलॉग दर्शकों के बीच इतने लोकप्रिय हुए कि इस फिल्म की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे और ये डायलॉग्स उनके आज भी चर्चित है, लोगों की जुबा पर है।

तो श्रोताओं, राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज से नहीं बंधे, इसीलिए अपनी फिल्मों की कामयाबी उन्हें एक के बाद एक मिलती रही। हमराज की बात करें, नील कमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा, पाकीज़ा जैसी फिल्मों में उन्होंने रोमानी भूमिकाएं स्वीकार की। हालांकि वो उनके चरित्र से मेल नहीं खाती थी, बावजूद इसके दर्शकों का दिल जीतने में राजकुमार सफल रहे।

दोस्तों, साल 1971 में कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा, जो कि पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित फिल्म थी, बावजूद इसके राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों की वाहवाही लूटने में कोई कसर न छोड़ी। फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार का बोला गया एक और संवाद, आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज़ की नकल करने लगे, और आज भी अक्सर ये डायलॉग आपने सुना ही होगा।

श्रोताओं, नीलकमल साल 1968 में प्रदर्शित फिल्म में एक भटकती आत्मा के अनूठे किरदार को निभाया राजकुमार ने, और ये फिल्म जो थी, इस फिल्म में उनके अनूठे किरदार के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सुनो दिल एक मंदिर साल 1963 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म में कैंसर मरीज़ के बेहतरीन और भावुक अभिनय के लिए उन्हें पहला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और इस फिल्म में भी उनके अभिनय के लिए उन्हें याद किया जाता है।

तो श्रोताओं, दिल अपना और प्रीत पराए, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर, दूज का चांद, हीर रांझा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी। साल 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने दो अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और खुद को चरित्र अभिनेता के रूप में भी उन्होंने स्थापित करने के लिए विभिन्न भूमिकाओं में खुद को

पेश किया और साल 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वो चरित्र भूमिका निभाने से भी बिल्कुल नहीं हिचकी और इस फिल्म के जरिए उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। इसके बाद कुदरत, धर्मकांटा, शरारा, राजतिलक, एक नई पहेली, मरते दम तक, सूर्या, जंगबाज, पुलिस पब्लिक जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए वो दर्शकों के दिलों पर राज करते रहे और हीर रांझा फिल्म में भी उनके जो अभिनय की बात करें तो वो बेमिसाल अभिनय रहा उनका और उसके ज़रिए हम हमेशा उनको याद करते हैं।

श्रोताओं, साल 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार साल 1959 में प्रदर्शित पैगाम फिल्म के बाद दूसरी बार आमने सामने थे। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे अभिनय की दुनिया के दोनों महारथी का टकराव देखने लायक था।

तो श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में अपनी रौबेली आवाज़, बेबाक संवाद अदायगी और अपने ख़ास अंदाज के लिए जाने जाते रहे राजकुमार।

तो श्रोतों, अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले जाने माने मशहूर दिग्गज अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए और अपने अभिनय से सजे कमाल बेमिसाल फिल्मों के जरिए, अपने व्यक्तित्व के जरिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे राजकुमार।

सदाबहार फिल्म गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराहन के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नगर सुमेश बागशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

तो दोस्तों, ये थी 3 जुलाई के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। चलिए कार्यक्रम युवाणी में एक बार फिर से ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में और करवाते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

और हम लोग जानू कि जुलाई महीने में पहल तारीख व 7 तारीख तक हम लोग वन महोत्सव मनोनू। ये मी हम लोग अब जो आसपास हमारे जगह छो वे रक्षा कसी हो उस जगह हमारे जीवन छू या बात को सब जाननी। तो यह लीजिए जुलाई महीने में पहल तारीख व 7 तारीख तक वन महोत्सव मनाई जानो।

0: होगा।
1: धन्यवाद विष्टजी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपको बात करना है। और अगर हम आपको पहाड़ा के मुख्य रूप उत्तराखंड बात कर लूँ, उत्तराखंड पहाड़ी से बात कर लूँ, तो हमारे से जंगल जगह बहुत जो लोग गहरा रिश्ते रही छू, अगर हम देखे जाओ हमारे जो सभ्यता छू, हमारे जो संस्कृति छू, वो सब जंगल बेटी निकली हुई छू। वो चाहे हमारे गीत छन, चाहे हमारे रीत रिवाज छन, हमारे प्रथा परम्परा छन, तुम देखला कि सबन में जंगल और जंगली जानवर जिले विशेष स्थान छू में बेटी निकली हुई छन। और अगर हम देखने जब हमारे यहाँ पे ये पीपल बटी, क्याऊ बटी, बरगद बटी, तमाम दर्जनों पेड़ आचन पदम जनर के हम लोग पूछ कर लू। हमारे यहाँ त्यारण का देखने जब आप घुघुती हो, घुघुते दिन काऊ का खवाना सवाल छू, या हरेला जो हमारे यहाँ त्योहार छू, बिजार दिन में हरिया हूँ, तो वो मुख्य पर्यावरण लगातार जुड़ी हुई पूर्व हमारे सवाल छन। और यहाँ तक कि हम देखने की जो अगर हम फल फूल तोड़ लो गाँव, अगर हम लोग बात करूँ जब हम जब खाना खाने खाना खबे हमारे बुजुर्ग लोग करती, जब हम नंदन की आदत से बीज बदल गई, जब खाना खा के जब ये पहुंची कि ये जुगाड़ जो छो थाई में छोड़ती है और उसको भैल भैर भैर बस धर दी।

पैर पे तुम नहीं घिसक ना। अगर रंगीन कपड़ा पहनना पछलपटी कही जाए तो मतलब परी लग जाए, लेकिन ये पछलपटी वास्तविक कारण ये चुकी जो रंगीन कपड़ों होने वील जो जंगली जो जानवर छो वो जरा डिस्टर्ब हो तो ये विल ये सब हमारे कोना मतलब जो हमारा जो रीत रिवाज में छन हमारे जो नियम मान्यता पड़ी हुई छन उनमें जंगल जगह बहुत महत्वपूर्ण स्तर रही छू। और अगर उसी देखो

0: जो बदलाव हो।
1: अच्छा, मुझे आत्मीयता कम है गए मुनिका,
0: आत्मीयता कम है।
1: अच्छा, अगर हम बात करूं कि जैसे हम वन महोत्सवपुर या चल लो पखवाड़ा चल लो, तो जो अपुल कहो कि जो हमारे बीच जंग और हमारे बीच जो रिश्ते जो आत्मीयता कम है रहे, ये को अगर हम पुनर्जीवित करना बात करूं कि जैसे हमारे पुराण पुरख हो ची, तो वो रिश्ते कसी दोबारा सिंचित हॉल, मतलब विकली कस प्रयास करी जाने की जो हमारा जंगों जो पुराना रिश्ते थी वो पहले चारी हरी भरी रहो।
0: तो मते ये लिए दो तीन चीज मतलब महत्वपूर्ण लग रही है। एक तो मत ये लगो कि जो जो संबंधित विभाग से मुख्य रूप के लिए जंगल जो जो अगर उत्तराखंड बात करने के, आज उत्तराखंड की जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र पर छू मैं लगभग 71% जो छू वन क्षेत्र छू। बहुत छोटी इलाके और उमल अगर हम मैदान वाले इलाके भैर कर दिलू पहाड़ा बात करूँ, तो पहाड़ा में तो लगभग 50% आसपास जो कुल हमारे भौगोलिक क्षेत्र पर छू, 50% आसपास हमारे पास जंगल वाले क्षेत्र। तो अब यानी कि यह फिर अधिकतर यह देख रहे का जिम्मेदारी जब हम बात करूँ तो मैं वन विभाग का मुख्य भूमिका छू। और लेकिन दिक्कत है कि जो वन विभाग और गोमालना बीच में जो संवाद छू जो बातचीत जो क्रम छू वो बहुत कमजोर होगो। ये जो संवाद छू लोग नौके और वन विभाग एक तो बहुत कम होगा, मतलब होगी यह संवाद हम उनको बहुत ज्यादा बढ़ोड़ा जरूरत छू लोग नौके बीच में।

अर्धतुलकी धार धारी दतुलकी धारी गरबरी गार तो छुआरो को इन मुआर अरे खका बदल छुआरो ना अरे तो छुआरो को इन मुआरी भय बंदो हाँ अरे खका आज तो छुआरो को इन मुआर भय बंदो हाँ के तोल बल रेख दो

अब झगरी को शमा साई झगरी को शमा झगरी को शमा कसी के

बारिशा बाद हम देखलूँ कि हमारे आसपास गंदगी बढ़ गई, जहाँ तहाँ पानी जम है जहाँ, और गंदगी बीमारी जड़ छू, यह बात को हर कोई जाने। एक बात है, बहुत से लोग सफाई नहीं करें, तो हम लोगों को यह बात तक ध्यान धरना चाहिए कि हमारे आसपास घर में जहाँ हम रोन हुई आसपास हम लोग सफाई कर रूँ, पर जो हमारे गाँव बाट गाड़ छिन, जो हम नगरी क्षेत्र में रहनू, जो हमारे गली मोहल्ला बाट छिन, जो हमारे बाजार कौन कौन छिन, वहाँ हम कूड़ फेर दिनू, तो हम लोगों को वाला सफाई के विशेष ध्यान देना पड़ोल। और हम देखने लग रहा है कि सरकार गांव में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए या नगर में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए बहुत ज़्यादा शौचालय बढ़ूण में सरकार अपनी तरफ से सहयोग देने लग रहा है, सरकार यमी सहायता राशि उपलब्ध कराने लग रहा है। तो हम लोगों ने भी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग सरकार जो योजना थी उन्हें लाभ उठूँ, और वीक लाभ उठावे अगर हम अब घर आस पास शौचालय बढ़ूँ तो उम्मीद सरकार हम हमका डबल टाके मदद करिल, और वील के हम गौना बात हम लोग गंदगी कम फैले। तो यह बात जब आप ध्यान धरला तो आप लोग उन्नति खुद बखुद जीवन में करला, जब बीमार नहीं पड़ला तो आप लोग ने काम करना कुशलता में वृद्धि हो, और जो डबल तक दवाई पानी में खर्च होनी वो दू डबल बचल रहा है। तो यह बात आपको ध्यान धरिया, और अब अगल का आपको सुन नया गीत छपेली समूह स्वर में।

श्रोताओं, यो अच्छी मोहन सिंह रीठागारी जनर गाई गीत अल्लाह को सुनाओ। और जैसा मूल कहो कि हम लोगों की सरकार जो योजना चले जा रही, जो सरकार अभियान चलू ना, उन्हें बढ़ चढ़ ढेर भागीदारी करन चाहिए। हम लोगों का अपन आसपास साफ सफाई विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हमारे आसपास का वातावरण साफ रहल, स्वच्छ रहल, तो जो बीमारी की संभावना होली वो कम है चाली। हम देखें अगर एर रूढ़ पड़ रहे थी और अब चौमास लगभग एगो मानसून का हम देखो पिछड़े 3 दिन जोरदार बारिश है

ಮುಡಿಕಾಕನ

तो श्रोताओं, जैसे हम आज कार्यक्रम शुरुआत में बात करी कि हम लोग वन महोत्सव मनाना रहा, हमको अपने आस पास चीज़ों का फिक्र होना चाहिए। जब हम अपने आस पास चीज़ों का फिक्र करूँ तब हमारा जीवन आसान हो, सुलभ हो। दगड़ में हम आज बात करी कि हम लोगों को साफ सफाई ध्यान धरना चाहिए। हमारे आस पास हम देखने कई बार गंदगी का अंबार लग रहा, हम लोग उसको देखे अनदेखी कर लूँ। और अगर हम गाँव घरों बाट हो या अगर हम नगरी क्षेत्र में बात कर लूँ, हमारे गली मोहल्ला बाट हो, हमारे बाज़ार में क्या हम देख लूँ, तो हम लोग को यह हमको क्या फ़र्क पड़े अफिरूँ। और कई बार हम लोग पास कोई कूड़ कबाड़ हों या हम बाज़ार में देख लूँ कोई हम चीज़ खानू, तो वीक जो कागज़ चुन जो थैल चू हूँ उतिक खेड़ दिन हूँ। यह कहूँ कि वहाँ गंदगी जो पहली बार मुड़ी कम ही वो आ सकर है जी। हम लोग देख लूँ बहुत से जाग में हम घर जो कूड़ कबाड़ हूँ उनको एक थैली बंद कर दिन वो जा खेड़ दिन जहाँ पहली बटी कूड़ जम है रूँ, तो वील क्यों गंदगी ढेर आई ठुल है जा। हमको हमेशा का बात ध्यान धरना चाहे जो नगरीय क्षेत्र में जो चयनित क्षेत्र छ कूड़ा जम करने जाग चू, वह हमको अपो घर कूड़ डालना चाहे उनको नगर निगम वाल उठा लो और वील के गंदगी कम फैलल। अगर हम ये दो चार बात तक ध्यान धरुल तो हमारे आस पास जो वातावरण हल वो साफ रहोल और स्वच्छ रहो। यही बात गए हमारे आज उत्तरायण कार्यक्रम इन लगे संपन्न हूँ। भूलूँ आप लोग देखा फिर भेंट होल एल आज्ञा दियो। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद।

0: जिस
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना।
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 187 नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। युवाओं से बिना किसी दबाव के ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में UNDP प्रतिनिधि इजाबेल ने मुलाकात की। विभिन्न कार्यक्रमों और भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों पर हुआ मंथन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अगस्त माह तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर 100% नियुक्ति करने के निर्देश दिए। और पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। यात्रियों का पहला दल आगामी रविवार को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में PCS मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों और कृषि व कृषक कल्याण विभाग में वैकल्पिक सहायक के पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों का आह्वान किया कि वे किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर संविधान, कानून और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के साथ राज्य सरकार पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी।
5: साथियों, आज हम सब मिलकर ये विकल्प सहित संकल्प लें कि हम अपने व्यक्तिगत हितों से उठकर इस देवभूमि की सेवा करेंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि ईमानदारी से काम करने वाले प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी के साथ हमारी सरकार चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। आपको कहीं किसी भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ नियम, न्याय और उत्तराखंड की जनता के प्रति ईमानदार रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारी सरकार के इस संकल्प के पूर्ति में आप सभी का निरंतर सहयोग हमें अवश्य मिलेगा।
4: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज सचिवालय में भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की भारत में डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इजाबेल ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य सरकार और UNDP के बीच संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के साथ ही भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से कौशल विकास व रोजगार, कार्बन क्रेडिट, डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवा प्रणाली के विस्तार तथा बच्चों के जन्म से ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने जैसे क्षेत्रों को राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए इनमें UNDP के सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने UNDP से आग्रह किया कि वो प्रदेश में कौशल विकास, उद्यमिता तथा आजीविका संवर्धन के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को और मजबूत करें। वहीं इजाबेल ने बताया कि UNDP उत्तराखंड में सार्वजनिक नीति और सुशासन के साथ सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग फास्ट फूड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक सुखविंदर कादियान ने बताया कि प्रतिभागियों को फास्ट फूड व्यवसाय की तकनीकी जानकारी के साथ केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न स्वरोजगार और वित्तीय सहायता योजनाओं की भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपना उद्यम स्थापित कर सकें।
6: 12 दिवसीय फास्ट फूड की ट्रेनिंग है। इसमें जो है पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर, जितने भी फास्ट फूड के प्रोडक्ट हैं वो सभी सिखाए जाएंगे। इसके अलावा ट्रेडिशनल खाना जो है बनाना वो भी सिखाया जाएगा, जिससे जो है 27 युवक युवती जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आगे जाके अपना छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक का अपना कार्य शुरू भी कर सकते हैं। जैसे स्टॉल लगाने से लेके रेस्टोरेंट खोलना हुआ या होम स्टे खोलना चाहते हैं तो उसमें अगर खाना बनाने से संबंधित है या कोई आगे अपना जो है किसी होटल में भी काम करना चाहते वो भी अपना कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सभी को जो है केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, राज्य सरकार की विभिन्न सब्सिडी की योजनाएं, उसकी भी जानकारी दी जाएगी।
4: वहीं कपकोट तहसील के किलपारा गांव के प्रशिक्षणार्थी सोनू आर्य ने कहा कि इस प्रशिक्षण से उन्हें भविष्य

0: में स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी।
1: हमको फास्ट फूड से रिलेटिव बताया जाता है, जैसे मोमो कैसे बनाए, स्प्रिंग रोल कैसे बनाए, अन्य प्रकार के फास्ट फूड संबंधित चीजें बताई जा रही है। हमारा जैसे क्षेत्र है पर्यटन के लिए हिसाब से काफी अच्छा क्षेत्र है सर। वहाँ को पिंडारी ग्लेशियर प्रसिद्ध है ट्रैकिंग के लिए, तो वहाँ काफी पर्यटन आते हैं, तो वहाँ अपना फास्ट फूड का रोजगार खोल सकते हैं, जिससे हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में काफी हम अपना रोजगार कर सकते हैं, अपना आय का संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं सर।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज विधान भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अगस्त माह के अंत तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रीमती आर्य ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के व्यस्त होने के बहाने के चलते विभागीय कामकाज प्रभावित होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बीएलओ के रूप काम करने के अलावा हर दिन कम से कम एक घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कामकाज निपटाएंगी। इस बारे में विभागीय सचिव को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखने के लिए कहा गया है।
3: आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाएं उनकी समीक्षा की गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिस प्रकार से लगातार जो SIR की ड्यूटी भी कर रही है, यानी कि वो बीएलओ की भूमिका भी निभा रही है, साथ साथ में उनको विभागीय कार्य भी करने होते हैं। लेकिन चूंकि अभी समीक्षा कर रही थी तो ये पता चल रहा था कि विभागीय कार्य जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हिला हवली हो रही थी, जिसको लेकर दिशा निर्देश आज जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए हैं कि कम से कम एक घंटा जो है वो विभागीय कार्य के लिए और साथ ही उनकी जो हैं वो जरूर अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उस रिकॉर्ड को फीड कर पाए पोषण ट्रैकर में।
0: पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों का पहला दल आगामी रविवार को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। श्रद्धालु धारचूला स्थित बेस कैंप में रात्रि विश्राम के बाद 6 जुलाई को उच्च हिमालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि सभी संबंधित एजेंसियों को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
4: इस साल की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, तो उसमें 10 दलों को कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने हेतु जाना है, और उसी के क्रम में जो पहला जत्था है, हमारा पहला दल है, वो 5 जुलाई को हमारे जनपद में पहुंचेगा और उसका स्टे उस दिन धारचूला में होगा। उसके बाद फिर जो पूरा उसका जो रूट होता है उसमें वो अपने आगे बढ़ेंगे। तो सारी तैयारियां जनपद स्तर पर पूर्ण है, क्योंकि इस समय मानसून काल भी और लगातार बारिश हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखे हैं। हमारी सारी टीम जो है, जितनी हमारी NDRF SDRF है और ITBP इसमें, क्योंकि साथ में ही चलते हैं उनकी पूरी टीम, तो वो सब लोग साथ में लेके चलेंगे जो हमारे यात्रीगण है। पूरी तैयारियां की गई हैं और सिक्योरिटी और सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इसके लिए विशेष निर्देश भी हमारे स्तर से प्रसारित किए गए।
0: प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत चंपावत में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। आदर्श चंपावत के तहत इस कार्यशाला में 53 विभागों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. GS खाती ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य सभी विभागों के साथ समन्वय कर उन्हें सभी प्लेटफॉर्म में प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना, ताकि भविष्य में आपसी समन्वय से विकास कार्य प्रभावी ढंग से हो सके।
5: ये कार्यशाला ऑनलाइन माध्यम से स्टेट स्तर से संपन्न की गई थी, इसमें हमारे सभी अधिकारी मौजूद थे। हमारे आदर्श जनपद चंपावत में 53 विभागों द्वारा सारी अपनी जो परिसंपत्तियां हैं, जो उनकी चल रहे काम हैं और जो भविष्य में होने वाले काम हैं, उन सभी को अपलोड कर दिया गया है सक्सेस। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह था कि किसी भी जो हमारे विभागों के बीच अंतर समन्वयन है और उसके जो इस प्लेटफॉर्म का उपयोगी प्रभावी उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 187 नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। युवाओं से बिना किसी दबाव के अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में UNDP प्रतिनिधि इजाबेल ने मुलाकात की। विभिन्न कार्यक्रमों और भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों पर हुआ मंथन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अगस्त माह तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्ति कर

0: भेजने के निर्देश दिए। और पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी, यात्रियों का पहला दल आगामी रविवार को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम वासवानी का गाया ये भक्ति वंदन।

0: विस्तारित किए हैं।
1: ये साल लिपुलेख मार्ग बिटेन कैलाश मानसरोवर यात्रा कुणु 10 दल जा जिला प्रशासनक बुलुण चिकी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना कुणु सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करें।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: उना मानसून के मद्देनजर आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा कुणी इनर लाइन परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगेगी। धारचूला को उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि मौसम की स्थिति में सुधार होने पर प्रशासन परमिट जारी करने के संबंध में दोबारा निर्णय लिया।
3: क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन परमिट पर प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच बीच में मौसम के स्थितियों को देखते हुए इनर लाइन पास जारी करने पर प्रशासन द्वारा समय समय पर विचार किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर एक्टिव रहती हैं। इसी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं जितने भी इसमें ट्रैवल टूरिस्ट लोग चलते हैं उन सभी की सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हुए इनर लाइन परमिट को
1: केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालकों की तरफ बिटे तीर्थ यात्रियों दगड़ अभद्र व्यवहार और मनमानी की लगातार मिलन व शिकायतों के बाद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ी है। प्रशासन ने स्पष्ट कौर की बिना पंजीकरण के भी घोड़ा खच्चर संचालक तय यात्रा मार्ग पर संचालन का अनुमति नहीं दिए जाए। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्र ने सभी घोड़ा खच्चर संचालकों से जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से अपर पंजीकरण कराने का अपील कर।
4: श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कभी कभी घोड़े खच्चर की सेवा लेनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं जहां पर घोड़े खच्चरों के जो संचालक हैं, जो हॉकर हैं, उनके द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है और जो प्रकरण संज्ञान में उसमें कार्रवाई भी की, परंतु इस तरीके के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो इस संदर्भ में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो भी हॉकर घोड़े खच्चर का संचालन करेंगे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जिला पंचायत में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, फाइन भी होगा, अन्य विधिक कार्रवाई भी होगी। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा सभी होकर अपना रजिस्ट्रेशन जिला पंचायत रुद्रप्रयाग में करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांचकों एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ कर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से ये उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आम जन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को स्वास्थ्य निगरानी तय मजबूत कंच ताकि जोखिम वाले यात्रियों को शीघ्र पता लग सके। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। प्रदेश में मानसून सक्रिय बनयु छ। मौसम विभाग ने आगामी 7 जुलाई तक राज्य में बरखा का येलो अलर्ट जारी करो। विभाग के अनुसार पौड़ी पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भोल भारी बरखा की संभावना छ। ये दौरान हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में आकाशीय बिजली चमकन भारी से अति भारी बरखा होन और तेज बथों चलनक भी आशंका जताई है। मौसम विभाग बुलुण छ कि अगला कुछ दिनों तक यानी स्थिति बनी रह सके। विभाग ने लोगों से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहन और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील कर। आखिर में मुख्य समाचार एकदम फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में अलग अलग विभागों में चयनित 187 अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र सौंपी। राज्य में भोहाल बटे 18 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा विशेष अभियान चल। कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पहलू जत्था 5 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचल। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को इनर लाइन परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक। और मौसम विभाग ने आगामी 7 जुलाई तक राज्य में बरखा को येलो अलर्ट जारी करियो छ। यांग दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।

FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के ठीक 7 बजे हैं। अब ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुनने सब दगड़े इनके मैं प्रमोद पांडे नमस्कार। दगड़ियों आज हम बात करना लाग रहे हैं ऊसर भूमि में धान उत्पादन पर। दगड़ियों भारत एक कृषि प्रधान देश जहाँ विभिन्न प्रकार मठ में खेती करी जा उसके तो ऊसर भूमि जो हूँ हम लवणी एवं सारी भूमि इस भूमि हूँ जो मैं लवणों या सोडियम अधिकता कारण फसल उत्पादन प्रभावित हूँ। इस भूमि में सामान्य फसल भल दरल विकसित निहबान वैज्ञानिक प्रबंधन और उपयुक्त धाना किस्मों चैनल ऊसर भूमि में ले सफलतापूर्वक धाना उत्पादन करी जा सको। लेकिन दगड़ियों पहली बात कर लेनो कि ऊसर भूमि आखिर छिड़के दगड़ियों ऊसर भूमि उ भूमि छ जैक उर्वरता लवणों या सारों अधिक मात्रा कारण कम है जा। यो प्रकार है भूमि पीएच सामान्य पीएच मान सामान्यतः 8.5 बटी ज्यादा हूँ। इस भूमि में पौधों जड़ों का विकास बाधित हूँ तथा पोषक तत्वों का अवशोषण कम है जा। दगड़ियों ऊसर भूमि में धान उपयुक्तता बारे में जब हम बात करूँ तो धान एक इस फसल से जो अन्य फसलों तुलना में ऊसर भूमि के ज़्यादा सहन कर सकें। खेत में पानी भरी रुणल माटे क्षारों प्रभाव कम है जा जैल धाना विकास अपेक्षाकृत बेहतर हूँ। दगड़ियों ऊसर भूमि में धान उत्पादन एक प्रमुख जो तकनीक छन उछन भूमि समतलीकरण करबेर उचित जल प्रबंधन करण मृदा परीक्षण आधार पर जिप्सनक प्रयोग करण गोबर खाद कंपोस्ट तथा हरी खाद उपयोग करण लवण एवं क्षार सहनशील धान किस्मों चयन करण बहत पर रोपाई तथा संतुलित उर्वरकों प्रयोग करण खरपतवार कीट एवं रोगों समुचित नियंत्रण करण गढ़ में आवश्यकता अनुसार जल निकासी की व्यवस्था रखना। दगड़ियों ऊसर भूमि के लिए जो उपयुक्त धान किस्म छन उचन CSR 10 CSR 13 CSR 23 CSR 27 CSR 30 और नरेंद्र ऊसर धान 3 यो किस्म लवणी एवं सारी परिस्थितियों में अपेक्षा के भल उत्पादन दीनी। दगड़ियों ऊसर भूमि में धान उत्पादन अनेक लाभ लक्षण जस की अनुपयोगी किस्मों किसी उत्पादन में उपयोग किसानों के आय में वृद्धि हूँ खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी मृदा गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार हूँ भूमि सतत एवं उत्पादक उपयोग। तो दगड़ियों ऊसर भूमि के वैज्ञानिक प्रबंधन जैविक पदार्थों उपयोग जिप्सन उचित प्रयोग तथा उपयुक्त धाना किस्मों माध्यम उपजाऊ बढ़ाई जा सको। आधुनिक कृषि तकनीकों के अपने भी किसान ऊसर भूमि में ले भल धाने पैदावार प्राप्त कर सकनी। यह न केवल कृषि उत्पादन बढ़ो बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति ले मजबूत हो। तो यो आप लोगों आज एक बात और अब कार्यक्रम में अगले सुनो दीवान कनवाला गई हुई शो लोगी।

0: पुदगड़ी वाला अबुल होक नल दीवान कनवाला गई हुई शुलोक की सुनो और अब कार्यक्रम में आज सुन लो नर्सरी और बागवानी करने कृषक सुंदर सिंह भंडारी दगड़ करेंगे जो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। आज हम बात कर रहे हैं श्री सुंदर सिंह भंडारी जी से जो कि ग्राम वजगल ब्लॉक हवालबाग जिला अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इनसे आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे खरीफ फसलों की उन्नत खेती के बारे में। तो भंडारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में। भंडारी जी, आप हमें बताइए कि इस समय आपने अपने खेतों में क्या क्या लगा रखा है।
1: अभी हमारे खेतों में मडुआ है, इसमें बुआई करके मैंने, और आपके अगले आने वाले नेक्स्ट टाइम में हम गहत है, उड़द है, मूंग है, मूंगफली है, सोयाबीन है
0: जी,
1: और भट है, और आपके का है, इस चीज की खेती करेंगे
0: जी। तो भंडारी जी, इसका बीज कहाँ से लाए आप?
1: इसका बीज हमें विवेकानंद और कृषि विज्ञान केंद्र मटेला बाकी पंत नगर।
0: अच्छा, तो यानी कि आप उन्नत जो बीज है हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो सोच किया गया बीज है उसको आप लगाते हैं।
1: हाँ
0: भंडारी जी, आपके पास जमीन कितनी है?
1: मेरी जमीन अभी चेक के रूम में करीब 44 नाली है।
0: अच्छा, 44 नाली। तो आपने जमीन पूरे में खेती कर रखी है या कुछ हिस्सा बंजर भी है?
1: इसमें से आधे से ज्यादा लगभग आधे बंजर है
0: जी।
1: और उसमें कुछ आधे में फलों की करी, आधे में मैंने आपके फसलों की रबी,
0: अच्छा
1: खरीफ फसलों की खेती कर रखी।
0: तो आप खरीफ फसलों की खेती कर रहे हैं, तो आपने धान भी लगाया होगा?
1: हाँ, अभी धान बोएंगे
0: जी। तो कौन सा धान, चैती धान भी बोते हैं आप?
1: चैती धान तो नहीं बोते हम, जेठ वाला धान बोते हैं।
0: यानी कि जेठी धान आप लगाते हैं। तो आपकी जो भूमि है क्या है, तराऊ में है या उपराऊ में है?
1: हमारी भूमि सारी उपराऊ में है।
0: तो आप वर्षा आश्रित, जो ये बारिश हुई, वर्षा आश्रित आपकी जमीन है। तो अच्छा भंडारी जी, जो ये बारिश हुई है इसका खेती पे क्या असर पड़ेगा?
1: जो बारिश हुई है इसका आने वाली बुआई के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे सब्जियों की हमारी सब्जी बोई थी मैंने करीब 8-10 नाली में, वो पूरी की पूरी चौपट हो गई, इसमें पंचड़ हो गया, समय से पहले उसमें ये झुलसा आ गया।
0: अच्छा, रोग आ गया है, क्या क्या कारण मानते हैं आप इसका, बारिश का होना?
1: इसका मीन ज्यादा बारिश का होना मानते हैं, जो जो हमारे वातावरण में है जो एक निश्चित मात्रा में होती है नमी, और नमी काफी बढ़ गई जिससे कि अब अनुकूल मौसम मिला इस झुलसा रोग का आने में
0: जी। तो अच्छा, उसकी वजह से झुलसा रोग आ गया। तो आप तो कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में लगातार रहते हैं, तो आपने उनसे सलाह मशवरा नहीं किया?
1: सलाह

0: रॉबी किया इसमें, देखिए इसमें लगातार बारिश ही कई 8-10 दिन से, इसमें दवाई का भी स्प्रे किया, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई चीज में दवा डालने से 6 घंटे तक कम से कम उसमें धूप रहनी चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए।
1: अच्छा, तो आपके पास पॉली हाउस?
0: हाँ पॉली हाउस है मेरे पास, एक 30x10 का
1: जी। तो आपने ये पॉली हाउस में के अंदर जो सब्जी लगाई थी तो वो उसका क्या हाल है?
0: हाँ पॉली हाउस के अंदर मैंने बीन लगाई थी, बीन ठीक ठाक है
1: जी। तो बीन आपकी बिक्री हेतु तैयार है?
0: हाँ बिक्री हेतु तैयार है मेरी बीन।
1: तो आपने जो उस नर्सरी का आप खास कर करते हैं, तो नर्सरी में क्या क्या लगाया?
0: अभी नर्सरी में मैंने इससे पहले मैंने करीब 40,000-50,000 पौधे बांट दिए, इसमें बैगन, शिमला मिर्च, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी के
1: जी। तो क्या भाव से बेचते हैं आप इनको?
0: इनको यही मार्केट और में बेचते हैं दौलागढ़ गोविंदपुर में।
1: अच्छा, तो जो ये आपकी बीन तैयार हुई है इसको आप बेचना शुरू कर दिया आपने, क्या भाव से बेचते हैं बीन आप?
0: ये 1 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से।
1: अच्छा, तो भंडारी जी आप मंडुआ माजरा आप कह रहे हैं ना, मंडुआ माजरा के लिए कैसी हुई है बारिश?
0: मंडुआ माजरा के तो अच्छी हुई है, नमी है काफी जमीन में, ताकि हल जो हमारे हल जुताई के लिए काफी अच्छा हुआ है।
1: अच्छा, तो ये क्या इससे फसल अच्छी होने की उम्मीद है?
0: हाँ इससे पर्याप्त नमी है जमीन में, पर्याप्त नमी होने के कारण हमारी जो जुताई होगी काफी अच्छी होगी, इसमें जमाव भी अच्छा होगा।
1: तो जो आपने पॉली हाउस लिए ये आपने खुद के पैसों से लगाए या कहीं से सब्सिडी प्राप्त हुई आपको?
0: ये मैंने हॉर्टिकल्चर विभाग से 80% सब्सिडी में लिया था।
1: अच्छा, 80% आपको सब्सिडी मिली और 20% आपने खुद का लगाया। तो मुंबली
0: हम जून में लगाएंगे, 1 जून में।
1: तो मुंबली हो जाती है क्या आपके वहाँ?
0: हाँ मूंगफली हो जाती है, इसमें जैसे जंगली जानवरों में बंदर और सोली का वो रहता ज्यादातर।
1: अच्छा आतंक, तो क्या कहते हैं मूंगफली का कितने क्षेत्र में लगाओगे आप मूंगफली?
0: मूंगफली फिलहाल आधी नाली में लगाते हैं हम, ज्यादा नहीं लगाते, इसमें ज्यादातर दिक्कत आती है।
1: तो कभी कोई अगर आप इसे सरकार तो हमारी कई योजनाएं चलाती है, तो आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं?
0: हाँ सरकारी योजना का लाभ उठाता हूँ मैं, इसमें से जैसे बर्मी कंपोस्ट हो गई आपकी, और ये मनरेगा के तहत खेती की दीवारें हो गई, और बीज हो गया, और नेट हिल नेट हो गई।
1: तो आप क्या कहते हैं ये सरकारी योजनाओं का लाभ आप उठा रहे हैं, जैसे फसल बीमा योजना है, आप कराते हैं अपने फसल का बीमा?
0: हाँ फसल बीमा कराई थी मैंने पिछली बार
1: जी। और किसान सम्मान निधि?
0: किसान सम्मान निधि मिलती थी मेरे को
1: जी। और तो किसान सम्मान निधि के जो पैसे मिलते हैं 2,000 रुपया, उसका क्या करते हैं आप?
0: उसका मैं अपने जो कृषि है मेरे, जैसे दवाइयाँ हो गया, बीज हो गया, रख रखाव हो गया फसलों का, इसी में यूज करता हूँ मैं ज्यादातर।
1: अच्छा, तो सिंचाई के साधन कैसे हैं आपके वहाँ?
0: सिंचाई के साधन तो एक तो मैंने अपने जो छत का पानी है उसका स्टॉक बना रखा है, दूसरा मेरे स्रोत है छोटे छोटे।
1: अच्छा,
0: दो तीन जगह उनमें प्लास्टिक की जो टैंकियां लगा रखी मैंने
1: जी। तो पानी आपके यहाँ पर्याप्त है?
0: पानी अभी तो पर्याप्त है, इस साल बारिश काफी अच्छी हुई, पानी की पूर्ति काफी अच्छी है
1: जी। तो खाद कौन सी डालते हैं?
0: खाद हम जैविक डालते हैं, जैसे बर्मी कंपोस्ट वगैरह होगी।
1: कितने गड्ढे हैं आपके पास बर्मी कंपोस्ट के?
0: मेरे पास 2 गड्ढे हैं जी फिलहाल।
1: और कितने बाई कितने हैं?
0: ये 10x2 का है एक।
1: अच्छा, यानी कि आपके पास 2 गड्ढे हैं। तो जैसे कभी जैसे अभी आपने बताया कि झुलसा आ गया है सब्जियों में, झुलसा रोग आ गया है आपने, तो ऐसी हमारी फसल में कभी अन्य रोग भी आ जाते हैं, जैसे प्याज में आ जाता है, लहसुन में आ जाता है, तो आप उस समय क्या करते हैं?
0: उस समय जैसे झुलसा के लिए प्याज में, जैसे ये प्याज गलन वगैरह आता है ना, मैं ये चैत में आता है ज्यादातर, जब नमी हो जाती है वातावरण में, काफी बारिश होती है, लगातार बादल रहते हैं, उसमें प्याज की जो ऊपरी पत्तियां हो जाती है जैसे गल जाते हैं बिल्कुल, सड़न जैसे जो काला सड़न टाइप का, उसके लिए हम दायथे में 45 हो गया और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, इसका वो छिड़काव करते हैं हर हफ्ते में
1: जी। तो बल्कि हम तो यहाँ पर ये कहेंगे कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह हमें हमेशा लेती रहनी चाहिए और उनके संपर्क में हमें रहना चाहिए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपके पास इसके अलावा और क्या क्या है?
0: इसके अलावा मेरे पास 2 बद्री गायें हैं।
1: अच्छा, तो बद्री गाय आप कहाँ से लाए?
0: बद्री गाय यही नोकल से ही लाए मैं।
1: अच्छा, तो बद्री गाय आप किस रेट से लाए?
0: बद्री गाय 4,000 के आसपास मिली मेरे को।
1: तो बद्री गाय का जो दूध है आप बेचते हैं उसको?
0: नहीं, बद्री गाय का दूध हम खुद अभी नहीं यूज करते, जैसे एक भी ब्याने वाली है अभी।
1: अच्छा, तो घी भी नहीं बेचते आप इसका?
0: घी भी अपने यूज के लिए ही करते हैं, घी बेचते नहीं हम,
1: क्योंकि बद्री गाय हमारी पहाड़ी गाय है, वो काफी अच्छी मानी जाती है।
0: काफी अच्छी मानी जाए, इसका घी भी काफी पॉजिटिव है, तो मार्केट में 1500 से 2000 रुपए किलो तक मिलता है लगभग।

0: सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भंडारी जी, इसके अलावा और आप जैसे फल फूल के पेड़ हैं?
1: हाँ, मेरे पास फलों के भी पेड़ हैं। इसमें जैसे मुख्यतः आम हो गया, आपके आंवले हो गए, अनार हो गया, आपका अखरोट हो गया, और सेब हो गया, संतरा हो गया, नींबू वर्गीय हो गए। इसके
0: जी, तो इन फलों को बेचते हैं आप, कहाँ
1: हाँ,
0: बेचते हैं आप इसको?
1: ये लोकल मार्केट में हो गया, थोड़ा बहुत ये अल्मोड़े में हो गया इधर।
0: तो बहुत बढ़िया कार्य आप शीघ्रता कर रहे हैं। तो भंडारी जी, आपसे अभी तक हम हमारे किसान भाइयों से और क्या कहना चाहेंगे?
1: हम अपने किसान भाई से यही कहेंगे कि आप जैसे बाहर गए हैं तो ठीक ठाक नौकरी है तो सही है, नहीं तो अपनी अपना व्यवसाय चलाएं। इसमें से जैसे मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, गाय पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मशरूम हो गया, आपके खेती हो गया, औषधि पौधों की खेती हो गई, इत्यादि करके अपने आजीविका को बढ़ा सकते हैं हम काफी।
0: आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी,
2: इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोड़े वाला आप लोग ने नर्सरी व बागवानी करनी कृषक सुंदर सिंह भंडारी दगण करी गई जो छेद संकलित भेंट वार्ता सुनी दगण। यो हमारे आज एक सलाह छे कि जो बद्री गुर्ष उके हम के पालन छे कि लेकिन बद्री जो गुर्ष वीक अगर उत्पादन आप दो देखला भली कम छे, लेकिन वीक जो पौष्टिकता छे वीक दूध में वो गजब छे। वीक जो घ्यू छे दगड़ियों वो 1,000 रुपये, 1,500 या 2,000 रुपये किलो तक बिक रहा, तो हम उनके लिए फैद छे। और बद्री गोर दगड़ियों आपको लोग समझने होना ला कि जो हमारे पुराण जब हम काठ गुर कुछा वो गुर छे। तो जो छे हमारा आज एक सलाह। और दगड़ियों अब कार्यक्रम में अगले सुनो सुरेश प्रसाद चुड़े वाले गई हुई शोलो गीत।

तो देखा लियो हाला वो लोग ना सूर्य प्रसाद हो गई फिर ये लोग गीत सुना और देखा लियो आप बोला हम सिंचित धान जो से उगा बोना हम तैयारी करने लग रहे हैं तो देखा लियो इतनी हम आप लोगों ने थे खून कि हम कोई ला फसल बो चाहे सिंचित धान बो या अन्य हम खरीफ है कोई ला फसल बो तो एक लीजिए जरूरी है कि हम पली बढ़िया ढंगल अपने खेत तैयारी कर लो तैयारी हमारे फल होली तो हमारे उत्पादन ला भल होल एक बात हम भले का ढंगल उन्हें खाद मिले लूँ और खेत के समतल कर भी कर लूँ और जब जैठी धान हम बात कर लूँ तो आप लोग ने नर्सरी तो लगाई हन्ने नर्सरी लगाई के बाद जब रोपाई बखत हूँ तो हमारे खेत जो है पूर्ण तरह पानी भरी हूँ छे और दगड़े इतनी हम आप लोग बात है हमेशा यही कून कि जब आप लोग ने नर्सरी लगाए तो वहाँ जो बी हूँ वो उन्नत पहुँचे यानी कि शोध करी हुई बू जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा शोध करी हो और कोई ले फसल लगुण है पहली हम उनके हमारे कृषि वैज्ञानिक छन उनसे सलाह मशवर कर लेन छे कि हम यो फसल लगूँ या तो कस होल तो दगड़े इतनी हम उनके यह फायद होल कि हमारे जो फसल से उमें कीट रोग या कोई अन्य प्रकार कोई ले नहीं हो और हमारे उत्पादन प्रभावित नहीं हो तो दगड़े मैं आप लोगों ने यही कहूँ कि आप लोग कृषि वैज्ञानिकों से सलाह अवश्य लिया तो दगड़ियों अब वक्त है को आज ग्राम जगत कार्यक्रम संपन्न करना है बोलो मैं आप लोगों फिर बातचीत करूँ एल मका आज्ञा दियो नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ मी ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में अलग अलग विभागों में चयनित 187 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र सौंपिन। राज्य में भूलबठे 28 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा विशेष अभियान चलौल। कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पहली दल 5 जुलाई के पिथौरगढ़ पुजल और आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करण पर एल रोक। और मौसम विभागल ऊणवा 27 जुलाई तक राज्य में बरखक येल्लो चेतावनी दी राखी। और अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थी और कृषि कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करें। यो मौक पर मुख्यमंत्री को की नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में प्रवेशक दस्तावेज नहा बल्कि 125 करोड़ उत्तराखंड वासियों के विश्वास अपेक्षा और जन सेवा संकल्प का प्रतीक छू। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक अधिकारी की पहचान वैक पदल न है बल्कि वैक कार्यशाली संवेदनशीलता और जनसेवा प्रति समर्पण होली। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकारक लक्ष्य उत्तराखंडक हर युवा के वैक प्रतिभा और योग्यता अनुरूप मौक उपलब्ध करूण छू। जैल रोजगारक तलाश में युवाओं के राज्य बठे भ्यार जानक लिजी विवश नहीं हुन पड़ोल। उनल अधिकारियों थे आह्वान करो कि ऊ क्वेले प्रकारक दबावल मुक्त हैबे संविधान कानून और जनहित के सर्वोच्च प्राथमिकता दीबेर अपूर्ण दायित्वों ढंगल पुर करो। राज्य सरकार प्रदेश भर में भूलबठे 28 जुलाई तलक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा आयोजित करनक निर्णय ले। यो अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रमक दूसर चरणक भीतर चलाई जाल। सेवा पखवाड़ा के दौरान अलग अलग विभागों जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराल और पात्र जानिन के सरकारी योजनाओं फैद दिलोणक लिजी विशेष अभियान चलाई जाल। दगड़े विशाल कामों में सरकारक जनहितकारी उपलब्धियों की जानकारी ले आम जानिन तक पुजाई जाली। यो संबंध में नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयालल बताए कि विकास खंड और तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाई गई और शिविरों में विभिन्न विभागों अधिकारी ले रोल और मनखियों समस्याओं को मौक पर ही समाधान करी जाल।
1: 4 जुलाई से प्रदेश व्यापी अभियान जो चलाया जा रहा है उस सेवा सप्ताह के लिए जिला नैनीताल में विकास खंडवार रोस्टर डिसाइड कर लिया है। बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होगा और जो प्रमुख 2 दर्जन विभाग हैं वो स्टॉल्स का संचालन करेंगे और उसके साथ जन उपयोगी सुविधाएं हैं वो मौके पर ही निस्तारित की जाएंगी। इसके अलावा जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और जो उपलब्धियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकार की उस पर भी परिचर्चा की जाएगी।
0: पिथौरगढ़ जिले में ऊणवाल कैलाश मानसरोवर यात्रा सपे तैयारी पूर कर ली गई। यात्रा पहली दल 5 जुलाई के पिथौरगढ़ पुजल जबकि श्रद्धालु 6 जुलाई के धारचूला बठे उच्च हिमालयी क्षेत्र के लिए नहजल। पिथौरगढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगाईल बताए कि यात्रा के सुचारू ढंगल संचालन करने के लिए सपे संबंधित विभागों के जरूरी दिशा निर्देश दी गई। उनल कहो कि मानसून और बरखक स्थिति के देखभेर पूर यात्रा बाट पर विशेष सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था करेगी। संवेदनशील जगहों पर SDRF और NDRF की टीम ले तैनात करी गई।
2: इस साल की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो उसमें 10 दलों को कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने हेतु जाना है और उसी के क्रम में जो पहला जत्था है हमारा पहला दल है वो 5 जुलाई को हमारे

0: जनपद में पहुंचेगा और उसका स्टे उस दिन धारचूला में होगा। उसके बाद फिर जो पूरा उसका जो रूट होता है उसमें वो अपने आगे बढ़ेंगे। तो सारी तैयारियां जनपद इस समय पूर्ण है क्योंकि इस समय मानसून काल भी और लगातार बारिश हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखे हैं। हमारी सारी टीम जो है जितनी हमारी NDRF SDRF है और ITBP इसमें क्योंकि साथ में ही चलते हैं उनकी पूरी टीम, तो वो सब लोग साथ में लेके चलेंगे जो हमारे यात्रीगण हैं। पूरी तैयारियां की गई हैं और सिक्योरिटी और सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विशेष निर्देश भी हमारे स्तर से प्रसारित किए गए।
1: यो साल लिपुलेख बाटबटे कैलाश मानसरोवर यात्रा 10 दल गुजरल। जिला प्रशासन कोण छू कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित और भल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सपे जरूरी व्यवस्था पूर कर ली गई।
2: मौनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: वहीं मानसून के दिगबेर आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करण पर एल रोक लगा हली। धारचूला उप जिलाधिकारी आशीष जोशील बताए कि मौसमक स्थिति में सुधार होने पर प्रशासन परमिट जारी करणक संबंध में दोबारा निर्णय लेल।
3: क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन परमिट पर प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच बीच में मौसम के स्थितियों को देखते हुए इनर लाइन पास जारी करने पर प्रशासन द्वारा समय समय पर विचार किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर एक्टिव रहती हैं। इसी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं जितने भी इसमें ट्रेवल टूरिस्ट लोग चलते हैं उनके सभी की सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हुए इनर लाइन परमिट को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
1: केदारनाथ धाम यात्रा बाट पर घोड़ खच्चर संचालकों की ओर बैठे तीर्थयात्रियों के दगड़ अभद्र व्यवहार व मनमानी की लगातार मिलने वाली शिकायतों के बाद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासनल सख्ती बढ़ा हली। प्रशासनल साफ कह हलो कि बिना पंजीकरणक कुएली घोड़ खच्चर संचालक के यात्रा बाट पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाली। रुद्रप्रयागक जिलाधिकारी विशाल मिश्राल सपे घोड़ खच्चर संचालकों थे जिला पंचायत में अनिवार्य रूपण अपूर्ण पंजीकरण करूँ अपील करी।
4: श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कभी कभी घोड़े खच्चर की सेवा लेनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं जहां पर घोड़े खच्चरों के जो संचालक हैं, जो हॉकर हैं, उनके द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है और जो प्रकरण संज्ञान में उसमें कार्रवाई भी की, परंतु इस तरीके के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो इस संदर्भ में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो भी हॉकर घोड़े खच्चर का संचालन करेंगे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जिला पंचायत में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, फाइन भी होगा, अन्य विधिक कार्रवाई भी होगी। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा सभी होकर अपना रजिस्ट्रेशन जिला पंचायत रुद्रप्रयाग में करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो।
1: नागर विमानन मंत्रालय देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डन पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुभारंभ करो। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड सहयोगल यो उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्मक उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच तालमेलक माध्यमल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य की निगरानी के मजबूत करण छू जैल जोखिम वाले यात्रियों के झट पताई ला जगा सकल। और अब एक नज़र आजक मौसम पर। प्रदेश में मानसून सक्रिय बनी छू। मौसम विभागल ऊन वाल 7 जुलाई तलक राज्य में बरखा की यल्लो चेतावनी दी राखी। विभागक अनुसार पौड़ी पिथौरगढ़ बागेश्वर जिलों में बहुत तेज बरखा का अंदाज छू और यो बीच हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में चाल चमकण और बहुत तेज बर्फ हुणक तेज बयाव चलनक री अंदाज जता रखो। मौसम विभागक कूण छे कि अगिल थोड़ा दिनों में यसे मौसम रूण वाल छू और विभागल सपनथे संवेदनशील जागो में होशियार रूण और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतनक अपील कर रखी। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में विभिन्न विभागों में चयनित 187 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र सौंपिन। राज्य में भूल बैठे 28 जुलाई तलक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा विशेष अभियान चलल। कैलाश मानसरोवर यात्रा सपे तैयारियां पुर पहली जत्थ 5 जुलाई के पिथौरगढ़ पुजल आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करण पर एल रोक और मौसम विभाग ऊन व 27 जुलाई तक राज्य में बरखा की येल्लो चेतावनी दी रखी। ये का दगड़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक यहीं खत्म हो। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के ठीक 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं गदर फिल्म के गीत के साथ। गीत को आवाज दे रहे हैं अजय चक्रवर्ती और प्रवीण सुल्ताना। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

गद्दर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं शैल हाडा, ऋचा शर्मा और पार्थिव गोहिल का गाया सांवरिया फिल्म का गीत। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत की धुन बनाई है मोंटी ने।

दिल्ली 6 फिल्म के इस गीत के बाद आज की फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं रेशमा का गाया हीरो फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

रेशमा के गाए हीरो फिल्म के सी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। ये पेश है मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस, और आज के सबरस प्रोग्राम का

जगजीत सिंह की गाई ये गजल अभी आपने सुनी। आइए अब आपको सुनवाते हैं ए हरिहरन की गाई ये गजल।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: ट्वेल्थ सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प,

0: जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
1: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
0: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सबरस प्रोग्राम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं अभिजीत का गाया ये गीत।

अभिजीत का गाया ये गीत अभी आपने सुना। आइए सबरस प्रोग्राम में अब आपको सुनवाते हैं आबिदा परवीन की गाई ये नज़्म।

गुलजार का कलाम अभी आपने सुना फनकार थे भूपिंदर सिंह। इसी के साथ आज का मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस अभी यहीं पर संपन्न होता है। FM 14.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से और अर्जेंटीना का सामना केप वर्डे से होगा। स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में यानिक सिनर, डैनियल मेदवेदेव और नोवाक जोकोविच का मुकाबला जारी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई, दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू और तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की हार के साथ कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज रात 11:30 ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 अर्जेंटीना और केप वर्डे आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: बीसी प्लेस स्टेडियम में हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को 2-0 से हराया। स्विट्जरलैंड की ओर से इस मुकाबले में ब्रील एम्बोलो और डैन नडोय ने गोल दागे। मैच की शुरुआत से ही स्विट्जरलैंड ने आक्रामक खेल दिखाया। 10वें मिनट में ब्रील एम्बोलो ने गोल करके स्विट्जरलैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही स्विट्जरलैंड ने अपनी बढ़त 2 गुनी कर दी। डैन नडोय ने शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में भेज दिया। यह वर्ल्ड कप में नडोय का पहला गोल था। 2-0 से पीछे होने के बाद अल्जीरिया मैच में वापसी नहीं कर सका।
2: Again, they should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now! The Swiss stride proudly on into the last 16 of the World Cup.
1: इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। यह पहला मौका है जब स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच जीते हैं। अब स्विट्जरलैंड का अगला मुकाबला 7 जुलाई को कोलंबिया और घाना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर एक शानदार गोल दागा। इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का नॉकआउट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने 41 साल और 147 दिन की उम्र में यह मुकाबला खेला। इसके साथ ही रोनाल्डो नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। उन्होंने पूर्व खिलाड़ी पेपे का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 39 साल और 283 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से गोंजालो रामोस ने निर्णायक गोल किया। वहीं स्पेन ने भी प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 का टिकट हासिल कर लिया है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया।
3: And Mikel Oyarzabal says, I'm in the picture for the golden boot at the FIFA World Cup 2026.
1: स्पेन की ओर से इस मुकाबले में मिकेल ओयारजाबल ने 2 गोल किए, जबकि पेड्रो पोरो ने अपने देश के लिए पहला गोल किया। साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद स्पेन की यह नॉकआउट मुकाबले में पहली जीत है। टीम का राउंड ऑफ 16 में सामना पुर्तगाल से 7 जुलाई को होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख करते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में इस समय यानिक सिनर का मुकाबला जेंसन ब्रुक्सबी से और डैनियल मेदवेदेव का सामना जॉन लेनार्ड स्टफ से हो रहा है। नोवाक जोकोविच का मुकाबला

0: आर्थर रिंडकनेक से जारी है। वहीं कल हुए मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रांस के वेलेंटीन रॉयर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सुनते हैं इस मुकाबले का हाल।
1: फ्रेंच ओपन चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं इटली के माटेओ बेरेटिने और मेजबान ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2 घंटे 4 मिनट तक चले मुकाबले में फ्रांस के वेलेंटिन रॉयर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले 2 सेट आसानी से अपने नाम कर लिए। तीसरे सेट में रॉयर ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टाई ब्रेक में ज्वेरेव ने बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया। मेजबान ब्रिटेन के 23 वर्षीय आर्थर फेरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने फिनलैंड के ओटो वेटानेन को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहले सेट में हारने के बाद फेरी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वे वर्ष 2000 के बाद विंबलडन मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचने वाले केवल 4थे ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल शाम 7 बजे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर टिकी हुई है।
2: युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को स्क्वाड में शामिल किए जाने के बाद से ही उनके डेब्यू पर सभी की निगाहें हैं। घरेलू क्रिकेट श्रृंखलाओं, विश्व कप और आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव को टीम में शामिल किया गया। आयरलैंड सीरीज में मिली हार के बाद वैभव को अंतिम 11 में लिए जाने पर अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड के साथ पहले मुकाबले में भी वैभव को खेलने का मौका नहीं मिला। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे मुकाबले में युवा स्टार को डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं। उधर बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत को विश्व कप जिताने वाले संजू सैमसन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। विश्व कप के बाद से सैमसन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी सैमसन महज 1 ही रन बना सके। आयरलैंड श्रृंखला में सैमसन कुल 5 ही रन बना सके थे। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने पिछले 3 मैचों में से 2 में 49 और 59 रन बनाकर अपना स्थान पुख्ता किया। सैमसन के अलावा तिलक वर्मा को भी मध्य क्रम में तेज खेलना होगा। इस साल 12 T20 में तिलक सिर्फ 12 छक्के ही लगा सके। दूसरी ओर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटोन जैसे बल्लेबाज श्रृंखला में अपनी दावेदारी पेश कर इस मुकाबले को जीतना चाहें। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भी 2 फाइनलिस्ट टीम का ऐलान हो गया है। उधर इंग्लैंड ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। कैनिंगटन ओवल में टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: इंग्लैंड ने 5वीं बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एमी जोन्स महज 2 रन बनाकर शबनम इस्माइल की गेंद पर आउट हुई। वहीं डेनी व्याट को 12 रनों के स्कोर पर मारिजाने कैप ने पवेलियन भेजा। एलिसा कैप्सी भी महज 1 रन ही बना सकी। 23 के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही इंग्लैंड की लड़खड़ाती हुई पारी को कप्तान नेट साइवर ब्रंट और हीथर नाइट ने संभाला। दोनों ने मिलकर 4थे विकेट के लिए 90 गेंद में 133 रन जोड़े। नाइट ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। वहीं साइवर ब्रंट ने 75 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्का जड़ा, जिसके दम पर इंग्लैंड 5 विकेट खोकर 169 रन बनाने में सफल रही। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका की ओर से शबनम इस्माइल ने और नॉन कुलुलेको मलाबा ने 2-2 विकेट निकाले। इंग्लैंड ने 5वीं बार T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड से मिले 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। टीम की कप्तान लॉरा वोलवार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। वोलवार्ट 15 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुई। हालांकि इसके बाद प्रोटियाज टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। एनेरी डक्सेन ने महज 3 रन बनाए। वहीं टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आई मारिजाने कैप भी सेमीफाइनल में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और सिर्फ 5 रन बनाकर चार्ली डीन का शिकार बनी। सुने लोस 11 रन ही बना सके, जबकि क्लो ट्रायोन को 12 रन के स्कोर पर सोफी एक

0: स्टोन ने क्लीन बोल्ड किया। ब्रिट्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंद में 51 रन की दमदार पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। नादिन डी क्लर्क ने 14 और अयाबोंगा खाका ने 4 रन बनाए। गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल ने 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि चार्ली डीन ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: मुकाबले के दौरान इंग्लैंड की सोफी एक्लिस्टन ने नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर को पछाड़कर सबसे ज्यादा 38 विकेट अपने नाम किए। बात निशानेबाजी पर, ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू होगा। भारतीय निशानेबाज पिछले 2 विश्व कप के प्रदर्शन को भुलाकर इस वर्ष प्रतियोगिता में मजबूती से वापसी करना चाहेंगे। सुनते हैं किन खिलाड़ियों पर रहेंगे नजर।
2: भारतीय निशानेबाजों ने लगातार राइफल और पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने इसी प्रदर्शन को निशानेबाज इस विश्व कप में भी दोहराना चाहेंगे। भारतीय निशानेबाजों के लिए ये विश्व कप और इसके बाद इसी महीने चीन के हांगझोउ में होने वाला ISSF विश्व कप एशियाई खेलों से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के 2 बड़े मौके होंगे। भारतीय टीम को अपने विदेशी कोच ब्रिटेन के ओलंपिक डबल ट्रैप चैंपियन पीटर विल्सन के मार्गदर्शन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारत की ओर से किनान चेनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष ट्रैप स्पर्धा में उतरेंगे। घरेलू ट्रायल और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ये तिकड़ी इस सत्र के दोनों विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने में असफल रही। पुरुष स्कीट स्पर्धा में भी निशानेबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ट्रैप स्पर्धा में नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत तथा स्कीट में परिनाज धालीवाल, ओलंपियन रायजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान इस सत्र के विश्व कप मुकाबलों में कोई सफलता हासिल नहीं कर सकी। महिला ट्रैप में आशिमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मोरक्को विश्व कप में 111 अंक के साथ 14वां स्थान रहा। नीरू अलमाटी विश्व कप के फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में 7वें स्थान पर रही। वहीं मनीषा 112 अंकों के साथ 26वें स्थान पर रही। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात शतरंज पर। क्रोएशिया में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने सफेद मोहरों का शानदार उपयोग करते हुए दिन के अंतिम गेम में नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर अनिश गिरी को मात दी। सुनते हैं करिश्मा की ये रिपोर्ट।
0: ईरान के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा ने अपने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 12 में से 10 अंक हासिल करके अपनी बढ़त 3 अंक तक पहुंचा दी है। जर्मनी के विंसेंट कीमर, फ्रांस के मैक्सिमम वाचियर लाग्रेव, रोमानिया के डियग बोगदान, डेनियल और गुकेश के समान 7 अंक हैं और वो संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। भारत के आर प्रज्ञान नंदा, गिरी और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दू सत्तोरोव उनसे आधा अंक पीछे हैं, जबकि क्रोएशिया के इवान सारिक और नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट सिर्फ 2-2 अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे हैं। रूई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन में गिरी के खिलाफ मिले अवसरों का गुकेश ने भरपूर फायदा उठाया। प्रज्ञान नंदा के लिए दिन और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन उन्हें अलीरेजा के खिलाफ एक गलती भारी पड़ी और आखिर में वह हार गए। प्रज्ञान नंदा ने फॉरेस्ट के खिलाफ दिन का पहला गेम जीता था। दिन की शुरुआत में गुकेश ने बोगदान डेनियल के खिलाफ अप्रत्याशित हार के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर शानदार वापसी करते हुए फॉरेस्ट पर जीत हासिल की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात बैडमिंटन पर। तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर में हार के साथ ही प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। तीसरी वरीयता प्राप्त जापान की रिको गुंजी ने तानिया हेमनाथ को सीधे गेम में 21-11, 21-11 से हराया। वहीं आकर्षि ने चौथी वरीयता प्राप्त अमरीका की बेवेन झांग को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 1 घंटे 7 मिनट तक चले मुकाबले में उन्हें 20-22, 21-17, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। उधर बास्केटबॉल में अहमदाबाद फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर की मेजबानी कर रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की

0: लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000

1000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग

0: के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अवतार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया सफ़र फिल्म का गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने और इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया चरस फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अच्छा, गुड नाइट।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया चरस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 9:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

फरमाइशी फिल्में गीतों के साथ हाजिर है आपका दोस्त भास्कर साहब। सभी श्रोता मित्रों का हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब व सलाम। श्रोता मित्रों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी ढेरों फरमाइशों के साथ। ढेरों फरमाइशें हम तक पहुंची हैं खतों के माध्यम से और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। तो हम आपके और आपकी फरमाइशों के बीच ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए शामिल करेंगे आज की पहली फरमाइश। पहली फरमाइश पेश करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी फरमाइश के फिल्मी नग में हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो हमें ख़त भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप नंबर 9411001122 इस नंबर पर मैसेज भेजकर अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में पहली फरमाइश जो हमें भेजी है वो हम शामिल करने जा रहे हैं। वो हमें भेजी है लाला बाज़ार अल्मोड़ा से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज़ अमान, माही, नीलोफर, शन्नो, शब्बो। आप सभी सुनना चाहते हैं तेरे नाम फिल्म का गीत। बहुत सुंदर गीत की आपने हमसे फरमाइश की है। गीत को आवाज़ दे रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत की धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने। तो लीजिए, आप सभी श्रोता मित्रों की फरमाइश पर पेश है तेरे नाम फिल्म का ये गीत।

तेरे नाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शामिल करने जा रहे हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है चंडीगढ़ से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। बहुत खूबसूरत से गीत की आपने हमसे फरमाइश की है। आप सुनना चाहते हैं आशा भोसले का गाया लूटमार फिल्म का गीत। गीत लिखा है अमित खन्ना ने और इस गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर पेश है लूटमार फिल्म का ये गीत।

लूटमार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आइए शामिल करने जा रहे हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सुनना चाहते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत। बहुत सुंदर गीत की आपने हमसे फरमाइश की है। गीत को आवाज़ दे रहे हैं कुमार सानू, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इस गीत की धुन बनाई है RD बर्मन ने। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर पेश है 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत।

1942 वाला स्टोरी, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आइए शामिल करते हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है ग्राम मसौटा पोस्ट ऑफिस ढौरा से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नारायण सिंह थापा, नीलिमा थापा और जय सूर्या थापा। आप सभी सुनना चाहते हैं आशिकी फिल्म का गीत। बहुत सुंदर गीत की आपने हमसे फरमाइश की है। गीत को आवाज़ दे रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत की धुन बनाई है नदीम और श्रवण ने। तो लीजिए आपकी फरमाइश पर पेश है आशिकी फिल्म का ये गीत।

अभी आपने सुना फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। और आज के कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश के रूप में हम शामिल करने जा रहे हैं जो फरमाइश हमें भेजी है खतियाड़ी अल्मोड़ा से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मुन्नी रावत, कुंदन सिंह, गीतांजलि और हर्षित। आप सभी सुनना चाहते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत। बहुत सुंदर गीत की आपने हमसे फरमाइश की है। गीत को आवाज़ दे रहे हैं किशोर कुमार, गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर पेश है मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत।

मेरे जीवन साथी, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ आज का फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर अब यहीं पर संपन्न होता है। अगले शुक्रवार को ठीक रात्रि 9:30 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र भास्कर साह को कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नुसरत फतेह अली खान और साथियों की गाइस कव्वाली के साथ।

नुसरत फ़तेह अली खां और साथियों की गाई ये कव्वाली अभी आपने सुनी। आइए अब आपको सुनवाते हैं साहिर होशियारपुरी का कलाम। फनकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं मौलवी इस्माइल ज़बी का कलाम, फनकार है उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

और गुलाम अली की गाई ये गज़ल अभी आपने सुनी। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश ये कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए झुक गए आंखें फिल्म के गीत के साथ। माफ कीजिए, फिल्म का नाम है भोला भाला। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है RD बर्मन ने।

काला बाजार फिल्म के इस गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं मुकेश का गाया पत्थर के सनम फिल्म का गीत। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मुकेश की आवाज में अभी आपने पत्थर की सनम फिल्म का गीत सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया स्वयंवर फिल्म का गीत। गीत लिखा है गुलजार ने और इस गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

स्वयंवर फिल्म के इस गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं मुकेश का गाया मधुमति फिल्म का गीत। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और इस गीत की धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

मधुमति फिल्म के इस गीत के बाद आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं देश परदेश फिल्म का गीत। गीत को आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार, गीत लिखा है अमित खन्ना ने और इस गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: देश प्रदेश फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में

0: पर बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।